0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चम के हर ॾींहुं। बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बबरलोए बाईपास से प्रिया कुमारी ए बेन मुगवी बारन जी बाजियाबी ला धरणो हणी वेठलन ते पुलिस रात जी उंदाई में कलकी पई लठबाजी ए तशद्दुद सोहणी पारस लियाकत जलबाणी ए सरदार लाशारी समेत केतरा ही अगवाण ए कारकुन गिरफ्तार सिंध मागवा ए गुम थियल 25 खां वधीक बारन जी बाजियाबी लोए बाईपास वट कौमी शाहरा ते प्रिया एक्शन कमेटी जे सड ते धरणो हयो वयो हो। अगवाणन जो चवण आहे त रात देर सां पुलिस ताकत जो इस्तेमाल कंदे कड़की पई ऐं लठबाज़ी कई। अगवाणन ऐं कारकुनन खे गीलींदे खंभे गुम करे छॾियो आहे। 25 खां 30 कारकुन गुम आहिनि। अमेरिका ईरान चिकताण में तेज़ी। अमेरिका जा 12 ॾींहं बि हमला जारी। कुर्दिस्तान सूबे में मुसाफिर टर्मिनल ते हमले में 2 ॼणा मारिजी विया। सीरकबो शहर अहवार ते बि हमला। अमेरिकी फ़ौज जो चवण आहे त सदर ट्रंप जी हिदायत ते ईरान ते हमलनि जो नओं सिलसिलो शुरू कयो वियो आहे। ईरान जा बि जवाबी वार। आबन हरमुज़ में ईरान जो अमेरिकी टैंकर ते हमलो। टैंकर खे बाहि लॻी वई। पासदार इनकलाब जो चवण आहे त ओमान जे समुंड वेझो अमेरिका जे 3 टैंकर आबन हरमुज़ मां गुज़रण जी कोशिश कई। हिक टैंकर खे बाहि लॻी वई। 2 वापसि हलिया विया। ईरान सां राब्तो करण खां सवाइ को बि टैंकर आबन हरमुज़ मां गुज़री न सघंदो। कुवैत में बि अमेरिकी अॾे ते हमलो। यमनी हुसैन जो सऊदी अरब जे 2 ऑयल टैंकर्स खे निशानो बणाइण जी दावा। यमनी हुसैन जो चवण आहे त बहरीन नाकाबंदी जी भंजकड़ीअ ते ऑयल टैंकर्स खे निशानो बणायो वियो। हुसैन सऊदी अरब ख़िलाफ़ सूमर ते बहरीन नाकाबंदीअ जो ऐलान कयो हो। सऊदी क़यादत ऐं एतिहादी नाकाबंदीअ जो भरपूर जवाब ॾियण जो ऐलान कयो हो। बहरी मुफ़ादिन खे निशानो बणायो वियो त दिफ़ा जा समूरा हक़ इस्तेमाल कया वेंदा। पाकिस्तानी यमनी हुसैन खे ख़बरदार करे छॾियो। रेड सी में सऊदी अरब जे बहरी नाकाबंदी वारनि धमकियुनि जी बि मज़म्मत। विच ओभर में चिकताण ते सऊदी अरब खे शामिल करण वारनि कोशिशनि ते बि गणती। सऊदी अरब जे सलामती ख़ुदमुख़्तियारी वारे अज़म जो वर्जाउ। परडे खाते चयो आहे त पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़नि तोड़े बहरी मुफ़ादनि ख़िलाफ़ क़दमनि खे पाकिस्तान जे क़ौमी सलामती ख़ुदमुख़्तियारी ख़िलाफ़ संगीन खतरो समझो वेंदो, जंहिं जो आलमी कानून मूजिबि भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। सऊदी अरब खे वापारी सरगर्मियुनि बाबति धमकियूं बि क़बूलण जोगियूं न आहिनि। हुकूमत लाॻीतो 3 ॾींहं पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाध करे छॾी। पेट्रोल 6.39 रुपया ऐं डीज़ल 7.83 रुपया फी लीटर महांगो। पेट्रोल जो नओं अघु 327.12 रुपया ऐं डीज़ल जो नओं अघु 375.04 रुपया फी लीटर थी वियो। नोटिफिकेशन मूजिबि नवां अघ 23 जुलाई लाइ आहिनि, जेके हींअर खां लागू हूंदा। वफ़ाक़ी हुकूमत ते लघनि में रोज़ाने जी बुनियाद ते फेरफार ख़िलाफ़ एहतजाज कंदड़ पेट्रोल पंप मालिकनि खे मार्जन वधाइण जो आसिरो ॾेई हड़ताल जो सॾु वापसि वटराए छॾियो। वफ़ाक़ी वज़ीर अली परवेज़ मलिक पेट्रोल पंप ओनर्स ऐं डीलर्स एसोसिएशन जे अॻवाणनि सां ॻाल्हियूं करे संदन मसला 2 हफ़्तनि में हल कराइण जी ख़ातिरी कराई। हुकूमती ख़ातिरियुनि ते पेट्रोल पंप मालिकनि गुज़िरियल राति 12 वॻे खां ऐलानियल हड़ताल जो सॾु वापसि वठी छॾियो। अली परवेज़ मलिक चयो आहे त रोज़ाने जी बुनियाद ते क़ीमतनि में फेरफार बाबति 2 हफ़्तनि खां पोइ पेट्रोलियम तनज़ीमनि सां गॾिजाणी थींदी। आलमी सतह ते तेल जा अघ घटि वधि थी रहिया आहिनि। जल्द शफ़ाफ़ अंदाज़ में इन फार्मूले तहत फ़ाइदो अवाम खे वापसि मुंतकिल कयो वेंदो। आबन हरमुज़ में कंहिं बि जहाज़ ते हमिलो थियो त ईरान जूं पुलूं ऐं बिजली घर तबाह करे छॾींदासीं। अमेरिकी सदर ट्रंप जे हिकु भेरो ॿीहर धमकी। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सदर ट्रंप जो चवण आहे त ईरान मुआहिदे लाइ तयारु नाहे, पर जल्द तयारु थी वेंदो। असांखे आबन हरमुज़ जी ज़रूरत नाहे। ईरान खे एटमी हथियार रखण न ॾींदासीं। आबन हरमुज़ में जहाज़नि ते हमिलो थियो त ईरान जूं पुलूं ऐं बिजली घर तबाह करे छॾींदासीं। मदे जी वेझो नौजवान बेदर्दीअ सां क़तल। ॻोठ सालार जखरो पारां पीर साबिर शाह वटि ॻोठ दड़े जाकरे वासी नौजवान ओशाक पुट अब्दुल रज़ाक जखरो जो गोलियूं लॻल लाश हथ। पुलिस जो चवण आहे त लाश इस्पताल मुंतकिल कयो आहे। वधीक जांच करे रहिया आहियूं। ऐं हिकु वण सिंध अमर जे नाओ। KTN न्यूज कावस जे वण पोखण वारे सॾु खे भरपूर मोट। सिंध खे मौसमियाती तब्दीली जे असरनि खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारे सॾु ते सिंध वासियुनि ऐलानियल तारीख़ खां अॻु वण लॻाइण शुरू करे छॾिया। KTN न्यूज कावस पारां 24 खां 31 जुलाई 2024 वण पोखण जो सॾु ॾिनल।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

इलाके में पुलिस गिरफ्तार करे वरतो। हैदराबाद में नेशनल हाईवे ते बबर लोई धरने में पुलिस की चढ़ाई खिलाफ नेशनल हाईवे ते धरणो हयो वयो। पुलिस अगवाणन के गिरफ्तार करे नसीम नगर थाने ते मुंतकिल कयो।

अमेरिका ईरान छिकताण में तेजी। अमेरिका जा ॿारहें ॾींहं ते हमला जारी। गोस्तान सूबे में मुसाफ़िर टर्मिनल ते हमले में ॿ ॼणा मारिजी विया। सीरकपुर शहर अहवार ते बि हमला। अमेरिकी फ़ौज जो चवणु आहे त सदर ट्रंप जी हिदायत ते ईरान ते हमलनि जो नओं सिलसिलो शुरू कयो वियो आहे। ईरान जा बेजवाबी वार। आबन हरमुज में ईरान जो अमेरिकी टैंकर ते हमलो। टैंकर खे बाहि लॻी वई। पासदार इंकलाब जो चवणु आहे त उमान जे समुंड वेझो अमेरिका जे टिन टैंकर्स आबनाए हरमुज मां गुज़रण जी कोशिश कई। हिकु टैंकर खे बाहि लॻी वई। ॿ वापसि हलिया विया। ईरान सां राब्तो करण खां सवाइ को बि टैंकर आबन हरमुज मां न गुज़री सघंदो। कुवैत में बि अमेरिकी अॾे ते हमलो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफ एम नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: पुरुष जो आप मीरपुर खास जो आवाज GA FM 88 मीरपुर खास जो आवाज।
0: आप सुन रहे थे GA FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GA FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GA FM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GA FM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786
3: GA FM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: तू तो मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आपकी जी कॉल्स लेते हैं आप लोगों की 03000113488 के ऊपर. फर्स्ट कॉलर ऑन द शो, हेलो. वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: बाजी वफा अब्दुल वहीद जतोई केटी शाबेलो.
0: केटी शाबेलो से. ओके, मुझे बताएं कि गाना सुनाएंगे?
1: बिल्कुल सुनाएंगे.
0: सुना दें.
1: हाँ बाजी, नगम है शमन मीराली का, हम सुनाता है. जान जान चई थो मिठा डाढ़ो ठही थो, जान जान चई थो मिठा डाढ़ो ठही थो. बाजी बस ये अचे तो मां के.
0: किस सिंगर का गाना है?
1: हाँ कुछ दोस्त है न, मेरा भाई है जहीर में जतुई, मेरा भाटे आया रमन जतुई, बाकी जो भी सुन रहा है वफा अब्दुल वहीद जतुई पारा हूँ. सजी सतक सलाम भाई दादर साहब को सलाम.
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू. और गाना हम प्ले करेंगे आपका, लेकिन थोड़ा सा इसे सुनेंगे.

0: के हो तो आवाज भी सिंपली है। GFM 88 नेटवर्क सिंपली आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: खुशखबरी खुशखबरी अहां जे बारे जे बेहतरीन करियर आई रोशन मुस्तकबिल जे लाए सखर जो मशहूर आई मन
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज।
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: एवरीबॉडी जो वेलकम बैक वंस अगेन, आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, हम लेने जा रहे हैं शो की नेक्स्ट कॉल और चेक करते हैं जी कौन और कहां से हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: हाफिज लखमीर, सलाम मोरो।
0: हाफिज लखमीर भाई, कैसे ठीक ठाक?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है।
0: ओके, जबरदस्त। मुझे बताएं, गाना सुनाना है कोई अच्छा सा?
1: जी जी, सुनाना है।
0: सुना दें।
1: हम सिंधी रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज़ हैं सारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे। हम सिंधी में रहने वाले सिंधी मेहमान
0: सारे। ओके,
1: हमारे दोस्त है
0: जी, जल्दी से
1: हेमंत पायल साहब, हाफिज सावन दिल्ली साहब और सरदत्त साहब और जो भी सुन रहे हैं, जवान मोहन बतौरी शमानी साहब जो भी सुन रहे हैं, सबको हाफिज लखनऊ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज।

0: ओके जी, नेक्स्ट कॉलर लेंगे और चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: एस आर एच.
0: कैसे? ठीक ठाक,
1: बिल्कुल खैरियत से.
0: ओके, मुझे बताए गाना सुनाएंगे?
1: जी
0: सुना दे.
1: हो सके तो मेरा
0: एक मिनट रुक जाए. ये गाना 3 दिन से मुझे लगातार लिसनर सुना रहे हैं और मैं प्ले भी कर रही हूँ. इसको चेंज करें,
1: इसको ब्लॉक करें.
0: नहीं, ब्लॉक नहीं करें, इसको चेंज कर लें, कोई और गाना सुनाएं, कोई और अच्छा सा.
1: चलो अपनी पसंद से सुना दें. कोई भी
0: अपनी पसंद का नहीं सुना सकती ना, रूल ये है कि आप गाएंगे तो मैं प्ले करूंगी.
1: चलो किसी और की चॉइस सुन लेंगे.
0: किसी और की चॉइस सुननी है? पक्की बात है?
1: जी जी जी जी.
0: और कुछ कहना है?
1: बस यही कहना.
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू. और यकीन करेंगे ये वाला गाना एक दो जो है उर्दू वर्जन में है वो, और दो जो सिंधी वर्जन में है वो मैं चारों प्ले कर चुकी हूँ. तो अब मुझे ख्याल आया कि इसको ना चेंज करना चाहिए. मतलब हर लिसनर आके ये वाला गाना गा रहा है, ज्यादा फेमस हो रहा है, मुझे नहीं पता था, सॉरी. अच्छा, नेक्स्ट कॉलर. हेलो हेलो
2: हेलो, अस्सलाम
0: वालेकुम. अस्सलाम, कौन बात कर रही है?
2: जी मैं मुस्कान बात कर रही हूँ.
0: मुस्कान कहाँ से?
2: लाड़काना से बात.
0: मुस्कान लाड़काना से कैसी हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है.
0: पहली दफा कॉल कर रही हैं? मैं भी ठीक हूँ, पहली दफा कॉल कर रही हैं.
2: जी जी, पहली बार शामिल हुई हैं
0: प्रोग्राम. सुनती हैं?
2: जी जी.
0: ओके, कौन सा प्रोग्राम है ये?
2: ये प्रोग्राम है चलती का नाम मस्ती.
0: चलती का नाम मस्ती है?
2: ये
0: कौन सा प्रोग्राम होता है? हेलो हेलो
2: जी, हेलो.
0: अच्छा, हमारे
2: जिंदगी गुलजार है. सॉरी सॉरी.
0: ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है. अच्छा, मुझे बताएं कि गाना सुनाएंगी?
2: जी, और इश्क मुर्शिद का वो सुनाए तो आपका बहुत शुक्रिया.
0: इश्क मुर्शिद का ओएस टी सुनना है?
2: जी.
0: किसी को डेडिकेट करना है?
2: जी, आपको और तमाम सुनने वाले लिसनर को.
0: ओके, बहुत सारा ख्याल रखो मुस्कान अपना. अल्लाह हाफिज, थैंक यू. और ये रहा गाना, और गाना हम प्ले कर रहे हैं साथ साथ आज का टंग ट्विस्टर भी बताएंगे. आज का टंग ट्विस्टर है कि चक्की में चक्का, चक्के में आटा, आटे में चक्की. ठीक है, ये कहना है. चक्की में चक्का, चक्के में आटा, आटे में चक्की. ठीक है, समझ के सुनेंगे फिर बोल पाएंगे. तो इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें, क्योंकि 12 बजे के बाद हम करेंगे हरा भरा पाकिस्तान, और फिर 12:30 के बाद हम करेंगे बोलो तो माने. गाना सुने, एंजॉय करें मेरे साथ में. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन जी एफ एम रेडियो नेटवर्क सिंध की.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पुलिस का दौरान गिरफ्तार कयल KTN न्यूज सखर जे रिपोर्टर साहिल जोगी समेत केतरा ही मुजाहिरीन गुम। गुजरियल रात बबर लोहे बाईपास ते प्रिया कुमारी बेन मुगवी बारन जी बाजे बिलाए धरणो हणी वेठन ते पुलिस कड़की पई। लठबाजी शिलिंग औरतन बारन समेत केतरा ही मुजाहिरीन जख्मी। बबर लोहे में धरणे तशद्दुद खिलाफ हैदराबाद में कौमी शाहराह ते एहतजाज कंदड़न के भी पुलिस सोघो करे वरतो। नसीम नगर थाने मुंतकिल।

कराची में फुर मज़ामत। डॉक्टर के कतल कंदड़ टे शकी जवाबदार मुबैना पुलिस मुकाबले में मारजी वया। पुलिस मौजूद कराची टूल प्लाजा भरसा अहमद बिरोई गोट में जवाबदार की निशानदेही से छापो हयो, जै दौरान नामालूम जवाबदार की फायरिंग में गिरफ्तार टे जवाबदार मारजी वया। एक पुलिस अहलकार जख्मी थो। क्लिफ्टन

जमनी हुसैन जो सऊदी अरब जे बिन ऑयल टैंकर्स के निशानो बनाने जी दावा। जमनी हुसैन जो चवण आए तो बहरीन नाकाबंदी की भनकड़ी से सऊदी अरब जे ऑयल टैंकर्स के निशानो बनाया वो। हुसैन सऊदी अरब खिलाफ सूमर से बहरीन नाकाबंदी जो ऐलान कयो हो। मदे जी वेझो नौजवान बेदर्दी से कतल, गोठ सालार जखरो बहरा दड़े जाखरे वासी नौजवान ओशाक जखरो जो गोलियों लगल लाश मिलो। पुलिस जांच शुरू करे छड़ी।

0: ऐं बलूचिस्तान जे इलाइक़े डेरा मुराद जमाली भरिसां हथियारबंदनि फायरिंग करे हिकु ॼणे खे क़तल करे छॾियो। मुंहिंजो शोरो थाणे घोट सूबा खान लुमराणीअ में हथियारबंदनि घर में घिरी इरफान चांडो खे फायरिंग करे क़तल करे छॾियो। पुलिस लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252578 6।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पे मौजूद हैं, तो एहतसाम को कहेंगे खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: एहतसाम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं। आई होप के तमाम हमारे सुनने वाले भी खैरियत से होंगे।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि इतने दिन बाद आपसे हमारी चिटचैट हो रही है, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इस वक्त चाइना की जो मौसम की सूरत हाल है वो क्या है?
1: पूरी दुनिया में ही जैसे आपको मालूम है कि ये समर सीजन स्टार्ट हो जाता है जून जुलाई में नॉर्मली, तो यहाँ पर भी स्टार्ट हो चुका है। बीजिंग में तो बहुत ज्यादा गर्मी इस वक्त नहीं है, लेकिन जो चीन के दीगर इलाके हैं, खासतौर पर साहिली इलाके हैं, वहां पर मई जून से ही शुरू हो गया था थोड़ा सा सर्दी का मौसम। मई में ही अगर मैं कहूं तो गर्मी का मौसम, तो वहां पर यकीनन गर्मी ज्यादा है, लेकिन बीजिंग का मौसम बड़ा मोतदिल है। एक दो बारिशें भी अभी दो चार रोज पहले हुई हैं, वैसे सच कोई बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। हाँ, अब यह है कि चूंकि अब जुलाई की आमद है, तो जुलाई में मुझे लगता है कि वो ऐसा मौसम होता है, थोड़ा सा हवा कम हो जाती है, हब्स ज्यादा हो जाता है, कुछ बारिशें होती हैं कुछ दिनों में, लेकिन नॉर्मली टेम्परेचर राइज ही करता है।
0: ओके जी, ग्रेट। अच्छा एहतसाम, आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं?
1: कुछ दिनों पहले मैं बीजिंग से सफर मैंने किया था सानिया का, और मैंने कहा भी था प्रोग्राम में एक कि हम कभी उस पर बात करेंगे कि मैंने जो कुछ वहां देखा वो कितना इम्पोर्टेंट है। इस वक्त हम हरा भरा पाकिस्तान के लिए जब बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि हमने आलूदगी से कैसे बचाना है, प्लांटेशन कैसे करनी है, या हम कहें कि हमें बिजली कैसे पैदा करनी है, जो क्लीन एनर्जी की हम बात करें, ये तमाम चीजें भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी है अगर हम उस पर बात करें तो मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो आज हमारा टॉपिक है, बेसिकली ये एक छोटा सा शहर बसाया गया शहर के अंदर सानिया में ही, और उसे कहा जाता है याजू बेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी। और इस शहर को बसाने का मकसद ये है कि चीन में जितनी भी तरक्की ज़राअत के हवाले से या समंदरी आबी हयात के हवाले से हो रही है, उस तरक्की को यकजा किया जाए और दुनिया भर से जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑपरेशन है, जो रिसर्चेस हैं, उनको एक जगह देखा जाए, ताकि उसका फायदा ये हो कि एक कंबाइंड एफर्ट हो चीन के लिए भी और दुनिया भर के लिए भी। तो ये एक ऐसा इसको छोटा सा अगर मैं शहर कहूं जिसको हम याजू बेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी कह रहे हैं, जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बताया गया कि जिस दरवाजे से आप दाखिल हुए हैं ये इस पूरे शहर का एक दरवाजा है, और यहां के तकरीबन कोई एक से ज्यादा दरवाजों से जब आप दाखिल, तो आपको इसी तरह का माहौल नजर आएगा जहां खामोशी होगी और आपको एक तहकीक की जो रूह है और जो एहसास है वो आपको नजर आएगा। इस जगह पर जो सानिया का शहर वैसे तो टूरिज्म के लिए है, लेकिन अब ये शहर साइंस रिसर्च और जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया भर में तेजी से उभरता हुआ एक शहर बन रहा है, और इसी के मरकज में ये सेंटर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये एक जदीद साइंसी और तहकीकी मरकज है और इसकी मंसूबा बंदी बहुत अच्छी है। एक जाने पूरा नीला समंदर है क्योंकि साहिल के बिल्कुल साथ है, और साथ ही फिर सरसब्ज माहौल भी हमें दिखाई दिया, और फिर जदीद इमारतें हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं और यूनिवर्सिटी के कैंपसेस भी हैं जिनको देखकर एक पूरे शहर का यकीनन आपको गुमान होता है। फिर ये एक मुकम्मल साइंसी माहौलियाती निज़ाम के तौर पर तश्कील दिया गया है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले पूरे चीन से जो साइंसदान हैं वो यहां आते हैं, रिसर्चर्स यहां आते हैं, स्टूडेंट्स यहां आते हैं, और साथ ही साथ जो मल्टीनेशनल कंपनीज या नेशनल बड़ी कंपनीज जो हैं उनके अफराद भी यहां आते हैं। सब साथ बैठते हैं, अपनी अपनी जरूरियात के हवाले से बात करते हैं, और फिर जो मंसूबे तख्लीक पाते हैं उनका मकसद यकीनन जदीद तहकीक को मईशत यानी चाइना की इकोनॉमी और उसकी सनत से जोड़ना होता है, और फिर नई ईजादात हमारे सामने आती हैं। एक खसूसियत यहां समंदरी तहकीक भी है, کیونکہ سانیا جو شہر ہے چین کا یہ جنوبی بحر چین کے قریب واقع ہے، اس لیے یہاں اوشن سائنس کے شعبے کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے، اور یہاں جو قائم تحقیقی ادارے ہیں وہ سمندری ماحولیات کے حوالے سے، آبی حیات کے حوالے سے، اور جو ڈیپ سی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور ڈیپ سی جو ریسورسز ہیں ان پر تحقیق کرتے ہیں، تاکہ اس حوالے سے بھی مضبوط جو ہے وہ بنیاد حاصل کی جا سکے. امپورٹنٹ چیز جو عام آدمی کے سننے کی ہوگی، ویسے تو بہت کچھ تھا اس ٹیکنالوجی سینٹر میں، لیکن جو ہم نے دیکھا وہ یہ کہ یہ بتایا گیا کہ چونکہ چین ایسا ملک نہیں تھا جہاں ہر طرح کے بیج دستیاب ہوں، اور میں یہ زراعت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو زراعت میں کچھ فصلیں ایسی تھیں جو چین کے پاس نہیں تھیں، کچھ پھل ایسے تھے جو چین کے پاس نہیں تھے. تو بیسیکلی اس ٹیکنالوجی سینٹر نے یہ کیا کہ وہاں سے جو سیڈ امپورٹ کیے گئے باہر سے، ان پر ریسرچ ہوئی، اور ان کی ریسرچ کے ساتھ ساتھ کہ وہ کیسے اس مٹی یعنی چین کی مٹی کے ساتھ کمبائن ہو کر ایک بہتر فصل دے سکتے ہیں، اس پر کام کیا گیا. اور پھر ساتھ ہی جو بیج منگوائے گئے اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہم آئندہ بیج نہیں منگوائیں گے بلکہ ہم چین میں خود یہ بیج بنائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جو کہ جس پر ہم سب بڑے حیران ہوئے، اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ کئی طرح کی فصلوں اور پھلوں کے ایسے بیج ہیں جو آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ اور دیگر افریقن کنٹریز سے بھی منگوائے گئے، اور پھر ان کو یہاں خود پیدا کیا گیا. تو یہ اس وقت چین میں بیج کی تحقیق کے حوالے سے اور چین میں بیج کو بنانے کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا سینٹر ہے. سننے والوں کو ہم یہ بھی بتائیں کہ چائنا میں ایک چیز بڑی مشہور ہے اور وہ یہ ہے یہاں کا سیڈ بینک، اور وہ سیڈ بینک یہ کہلاتا ہے کہ آپ دنیا بھر سے جتنے بھی بیج منگوا رہے ہیں ان بیجوں کا یہاں ہونا ضروری ہے. وہ ایک جیسے ہم نارمل بینک ہمارا کرنسی بینک ہوتا ہے، ایسے ہی سیڈ بینک ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ صرف ان بیجوں کو یہ کہنا چاہیے کہ محفوظ نہیں کرتا، بلکہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو فصل کو ملا کر کوئی نئی چیز بنائی جاتی ہے دو بیجوں کو، اس کے سلسلے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ. اب ملک بھر سے یہاں سائنسدان جمع کیے جاتے ہیں، ایک خاص سیزن ہوتا ہے تب تک وہ کسی چیز پر ریسرچ کرتے ہیں، پھر پراپر ٹرینڈ فارمرز کو بلایا جاتا ہے اگست سپٹمبر میں، اور پھر وہ ان بیجوں کو لگاتے ہیں، اور اس کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے، فصل اگتی ہے، پھر ریسرچرز کو بلایا جاتا ہے کہ اب آ کر دیکھیں کہ یہ جو فصل ہم نے اگائی ہے اس میں پروٹین، اس میں دیگر چیزیں، غذائی ضروریات کتنی اچھی ہیں، اور کیا وہ لوگوں کے استعمال کے لیے ہیں یا لوگوں کے استعمال کے لیے نہیں ہیں. پھر ساتھ ہی اس منصوبے میں خلائی ٹیکنالوجی بھی شامل ہے، اور خاص طور پر اس وقت تو ہم جب بات کرتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے ہم سوچیں تو بہت زیادہ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن پاکستان کا خلائی شعبے میں چین کے ساتھ ہے. حال ہی میں دو ایسٹروناٹس جو ہیں ان کو پاکستان سے بلایا گیا ہے، وہ یہاں تربیت حاصل کر رہے ہیں. اب وہ دو ایسٹروناٹس میں سے ایک ایسٹروناٹ چین کے خلائی جہاز کے ساتھ خلائی مشن میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جائے گا بھی، اور وہ چین کے کسی خلائی پروگرام میں پہلا شخص ہوگا، پہلا غیر ملکی ہوگا، اور وہ پاکستان کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستانی ہوگا. اور دوسرا جو فرد تربیت کے لیے یہاں موجود ہے وہ یہاں جو ان کا سائنس سینٹر ہے گراؤنڈ پہ وہاں موجود رہے گا. تو سائنس کے حوالے سے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ اس چیز کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا آج کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی طرح کے کام ہو رہے ہیں مستقبل کے حوالے سے، اور جو غذائی ضروریات ہیں چاہے وہ 1 ارب 40 کروڑ سے زائد افراد کی چین میں ہوں یا پاکستان میں ہم 25-26 جو بھی آفیشیل نمبرز ہیں کروڑ کی اگر ہم بات کریں، جو آبادی ہے ہماری اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، تو غذائی ضروریات ہونا بہت ضروری ہیں، اور یہ اس طرح کے سینٹرز، اس طرح کے جدید مراکز یہ بیسیکلی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ کیسے مستقبل کی پیش بندی کر سکتے ہیں. ہم گندم اگاتے ہیں لیکن وہ گندم پھر ہم ایکسپورٹ کرنے کے بعد واپس امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر کمی ہو جاتی ہے. چاولوں کا بھی یہی حال ہے، دیگر فصلوں کا بھی یہی حال ہے، تو ایون چینی کا بھی، گنے کا بھی. تو پھر یہ جو سینٹرز ہیں بیسیکلی یہ آپ کو تیار کرتے ہیں کہ آپ کیسے ریسرچ کے ساتھ اپنی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں، और दूसरी बात यह कि वो आप कैसे इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं फिर इतना बढ़ाने के बाद कि उसमें क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो बहुत जरूरत है पाकिस्तान में भी इस तरह के सेंटर्स के काम करने की। और जो इम्पोर्टेंट चीज हमें नजर आती है वो हर शोबे में है, वो एग्रीकल्चर में भी है, समंदरी जो आबी तहकीक है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें भी है और खलाई तहकीक में भी है, वो ये कि किसी भी रिसर्च को इंडस्ट्री के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। अगर हम इंडस्ट्री के साथ नहीं जोड़ते तो फिर मुश्किल होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज होगी।
0: ओके जी, एहतसाम आप मुझे सुन सकते हैं?
1: जी जी मैं सुन रहा हूँ।
0: ओके जी, तो मजीद इस बारे में आप हमें और क्या बताएंगे?
1: बस एक चीज जो कि मैंने नुक्ता बुनियादी छोड़ा आखिर में, मेरा ख्याल है इस पर हम थोड़ी बात और करेंगे, और वो ये कि पाकिस्तान में जो रिसर्चेस हो रही हैं टेक्नोलॉजी के मैदान में, अभी कुछ गुज़श्ता दिनों मेरा एक यूनिवर्सिटी में जाना हुआ और वहाँ एक सेशन था जिसमें जो पीएचडी स्कॉलर्स थे और जो एमफिल के स्कॉलर्स थे उनको टीचर्स बता रहे थे कि आपने दाखिला ले लिया है, आपका पहला साल गुजर चुका है, तो अब आपने करना क्या है आगे जाकर, आप जो सोच कर आए हैं पाकिस्तान से कि मैंने ये करना है वो करें, या आप ये देखें कि इस वक्त मार्केट क्या है, चीन की मार्केट क्या है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज उन्होंने ये बताई हमें कि अब आप जो कुछ भी प्लान करना है 2026 में खड़े होकर चीन में अगर आप पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप चीन में ही जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने लिए देखें या यहां से नई चीजें सीख कर जाएं, तो चीन में अगले 5 साल के लिए जो कुछ अनाउंस हो चुका है कि हमने बिजली कैसे पैदा करनी है, हमने ज़राअत को कहाँ लेकर जाना है, वो पूरा एक प्लान होता है 5 ईयर्स में। तो उस प्लान के मुताबिक अब आप ये देखें कि आपकी जरूरत कहाँ तक है और आप किन चीजों में आगे जा सकते हैं, बजाय इसके कि आप ये करें जो कुछ आप सोच के आए थे कि मैं ये पढ़ूंगा, अब आप वही पढ़ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज जो वहां समझ में आई वो ये थी कि इंडस्ट्री के लोग मौजूद थे, एकेडेमिया के लोग मौजूद थे, स्टूडेंट्स मौजूद थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स मौजूद थे, और वो ये प्लान कर रहे थे कि आइंदा आने वाले सालों में जो रिसर्च होनी है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड रिसर्च होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी रिसर्च करते हैं और ये चाहें कि आप मार्केट में शामिल हो जाएं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, बल्कि आपने इंडस्ट्रीज को सॉल्यूशंस देने हैं, आपने उन तमाम मुश्किलात का हल निकालना है जो इस वक्त इंडस्ट्री को दरपेश है, तो ये सिस्टम आगे बढ़ता है। तो बेसिकली एक कंबाइंड एफर्ट हमें नजर आ रही है, और वो कंबाइंड एफर्ट ये है कि जो रिसर्चर हैं वो अपनी रिसर्चेस को इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम साथ ऑर्गेनाइज करें, उनके साथ इंटीग्रेट करें, ताकि उनको ये मालूम हो कि जब मैं कोई आइडिया दूंगा इंडस्ट्री को इसका फायदा होगा, मेरे लिए जॉब ऑपर्चुनिटी है और बजाय इसके कि मैं रिसर्च कर लूं और फिर सोचूं कि मेरे पास ये आइडिया है अब इस पर काम करें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी डिफरेंट अप्रोच है। पाकिस्तान में सोशल साइंसेस कभी
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

ओके जी, फाइनली इसी के साथ हम लेंगे इजाजत. और आज का जो टंग ट्विस्टर है एग्जैक्टली वो विन कर लिया है जी सरदर्द ने, जिन्होंने बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बोला है और लास्ट में उनकी कॉल लगी है लेकिन लग गई है. और इसी के साथ फाइनली हम प्रोग्राम को करेंगे रैप अप और लास्ट में हम प्ले करेंगे फरहान सईद की आवाज. और इसी के साथ फाइनली जाते जाते हमेशा वही बात के ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी है और ख्वाब पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है. लिप्स पर बर्थिंग खाई. सो दिस इज मी आर जी रुखसार, साइंस आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमानी खुदा, अल्लाह हाफिज.

बबर लोई धरने ते पुलिस कहा दौरान गिरफ्तार कयल केटीएन न्यूज सखर जे रिपोर्टर साहिल जोगी समेत केतरा ई मुजाहिरीन गुम गुजरियल रात बबर लोई बाईपास ते प्रिया कुमारी ऐं बेन मुगवी बारनि जी बाज़ियाबी लाइ धरणो हणी वेठलनि ते पुलिस कड़की पई लठबाज़ी ऐं शेलिंग औरतनि ऐं बारनि समेत केतरा ई मुजाहिरीन जख़्मी बबर लोई में धरणे तशद्दुद खिलाफ़ हैदराबाद में क़ौमी शाहराह ते एहतजाज कंदड़नि खे बि पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो नसीम नगर थाना

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252578 6।
3: जी हाँ 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कसीदा जो कि आप लोगों ने सुना, और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एच पी एहसास, आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल यानी कि टॉपिक क्या पूछा जा रहा है तो वो भी जरा बता देते हैं। ओके जी, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि कभी ना कभी हमने इस बारे में जरूर सोचा होगा, भाई जो मेरी तरह के लोग हैं ना, यानी कि जो सोचते हैं कि भाई आगे पता नहीं क्या होगा, कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, तो उन लोगों ने इस बारे में लाजमी सोचा होगा। अगर आप जो है ना आज ऐसा टॉपिक है कि जरा आज भी आप फर्ज करेंगे, और आज आप जरा फर्ज कीजिए कि आप रात को सोए, ठीक है, जब आप सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ आप अकेले इंसान हैं, सारी दुनिया खाली है, तो आप बताएं आप इस सूरत हाल में क्या करेंगे। पूरी दुनिया में सिर्फ आप अकेले इंसान हैं तो आप क्या करेंगे। ओके जी, मुझे बताएं जल्दी से। वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई है, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो जानते होंगे, नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं। और इसी के साथ साथ आप मुझे बताइए जल्दी से, अगर आप रात को सोए सुबह उठे देखें भाई पूरी दुनिया में जो है लोग गायब हो चुके हैं, आप अकेले दुनिया में बचे हैं, तो आप क्या करेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888-1।

0: अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है. आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा. उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना पेज को जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड जी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. बताइए दुनिया वालों को कि मार्केट में व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं. तो जल्दी जल्दी से आप जो है ना परचेज करेंगे. अगर आप भी ये चाहते हैं भाई आपने मालूमात ली है लेकिन आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुए तो आप भी अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपको नंबर्स बताए जाएंगे प्रोग्राम के अंदर, जिनके पर आप रابطہ करके आराम से इजीली अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा सकते हैं. ओके हो गया. ओके जी, इसी के साथ साथ अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं, जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए जी, बिस्मिल्ला. और अगर आप ये चाहते हैं कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आप बिल्कुल नए वाले लिसनर ही हमारी नहीं जानते प्रोग्राम में कितने सारी जो है ना वो खूबसूरती की बातें होती हैं, तो आप लोगों को बताते चलें कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं. जैसे कि आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मिल रही है जो कि नाइट क्रीम है, व्हाइट एज लवली क्रीम है जो कि फेयरनेस क्रीम है, व्हाइट एज ब्यूटी सोप मिल रहा है, व्हाइट एज फेस वॉश मिल रहा है और व्हाइट एज का डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मिल रहा है. उसके अलावा लोशन है, हेयर रिमूवल लोशन है जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर अवेलेबल है. ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि व्हाइट एज में है. उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है. ये तमाम प्रोडक्ट जिनके बारे में पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाएगा, ये सिर्फ डिस्क्लेम था, बाकी तो पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को बताती रहूंगी कि कितने सारे प्रोडक्ट्स और क्या क्या उनकी क्वालिटीज हैं. ओके जी, जल्दी से पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए, टॉपिक को फॉलो कीजिए. अगर आप रात को सोएं, सुबह उठें, देखें तो पूरी दुनिया में आप अकेले इंसान बचे हैं, तो इस सूरत हाल पर आपका क्या रद्द अमल होने वाला है. अच्छा, आबिद हमारे साथ मौजूद है, गुड जॉब, थैंक यू भाई जान. आदिल हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं ठीक, आप बताएं जी. कहते हैं कि वो जो आज मरने पर तुला है उसने जीकर भी तो देखा होगा, जिंदगी से हार मान लेने वाले अक्सर वही होते हैं जिन्होंने दर्द की इंतहा को करीब से देखा होता है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. अच्छा, बख्त अली सियाल हमारे साथ मौजूद हैं, भाई को वेलकम कहा जाता है. यूनिस खोड़ो हमें सुन रहे हैं, गोट दौलत खोड़ो से आपको भी वेलकम कहा जाता है. चाचा खाले जूनी जो हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम, किया आयो हो, खुश आयो वेगी भाईट्री. बिल्कुल खुश मजे में तां बुधा किया वेगा चाचा. और आदिल हुसैन तमाम गानों लिखियो हलाइन की कोशिश कयूं था. अखलाक बलूच भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम. वहीद वफाई हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम. सिद्रा जी क्या हाल चाल है आपके, माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम. जेकब आवाज से आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है. आबिद बिरोही भाई हमारे साथ हैं, गुड शो जियो, बिल्कुल जी जियो करे. सुफियान अहमद हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अखलाक भाई कहते हैं जी बिल्कुल जिंदा है आपके साथ फिर. बिल्कुल जी बिल्कुल. और सुफियान कहते हैं तो हम भी चले जाएंगे जहां लोग गए नहीं, आप अकेले हैं ना, आपके बस में नहीं होगा कि आप लोगों के साथ चले जाएं, वो चले गए आप बताएं अकेले हैं तो इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे. और चाचा खालिद कहते हैं टॉपिक आंसर से जो इसमें सबसे पहले अपनी बेगी भाईटरी को तलाश करूंगा उस वीरान खाली दुनिया में, मैं भी तो फिर गायब हो चुकी होंगी ना. अच्छा दर्दी दिल हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम चंदा जानी, क्या हाल है, कैसी है? माशाल्लाह माय फेवरेट आरजी आ गई और मैं भी आ गई, क्या बात है, आपको खुशामदीद कहा जाता है. अली मुर्तजा कहते हैं सिडो सलाम एंड गुड आफ्टरनून, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? लिखते हैं शो नहीं सुन पाऊंगा, फर्स्ट हाफ कॉल सफर में हूँ, सेकंड हाफ में आ जाएंगे, लास्ट में हुमेरा चन्ना का सॉन्ग प्ले करना, तुझे प्यारे जे लाइक नाया माँ. चले माँ बिल्कुल कोशिश करम तव्हांजी पसंद जो गानो बुधंदासीं, ऐं तव्हांजी मोहबतूं आहिनि तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया. ऐं इन खां अलावा जेके जेके माण्हू मौजूद आहिनि पोस्ट ते तव्हां लाइक ऐं शेयर कंदा हलो बाबा पोस्ट खे. सुफियान कहते माशाल्लाह आपकी स्माइल प्यारी है, थैंक यू. और उसके अलावा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, टॉपिक को फॉलो कीजिए. जरा टाइम हो जाता है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं. आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, सुनते रहेंगे और साथ देंगे पूरी पूरी 3 बजे तक. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए.
1: FM 88 सिंध की आवाज.
2: क्या आप आसाबी दर्द जोड़
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

तो बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी, जब आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए है, क्योंकि व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को ये चीज का अंदाजा हो जाएगा कि व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो है आपकी जल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है। ये जल्द की जो स्किन है ना उसको नरम मुलायम और तरोताजा बनाती है और इसके इस्तेमाल से चेहरे की जो खुश्की है, दाग धब्बे हैं, बेरोनकी है, ये सब चीजें कम होने लगती हैं, जबकि जल्द जो है आपकी ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होना शुरू हो जाती है। व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम में शामिल खास अज्जा जिसमें एवोकाडो है, एलोवेरा है, मिल्क है, ये तमाम चीजें आप लोगों की स्किन की हिफाजत करती है और कुदरती खूबसूरती को उजागर भी करती है। रोजाना इस्तेमाल से चेहरा आपका फ्रेश, खूबसूरत और पुरकशिश नजर आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपके पास कोई अच्छी सी नाइट क्रीम होनी चाहिए तो आपके पास व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का ऑप्शन खुला हुआ है। अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए जी, इससे शानदार प्रोडक्ट आप अगर लगाना चाहें तो आपको नहीं मिल सकता। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का आप जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा। नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सोने से पहले। उसके अलावा अगर आप कोई अच्छा सा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके पास व्हाइट एज का ब्यूटी सोप मौजूद है, और व्हाइट एज का ब्यूटी सोप जो है ना ये व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम की मतलब डिटो कॉपी है, सेम टू सेम है दोनों। जब आप जाएंगे तो आप लोग अगर व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के बारे में जानते ना कि भाई हाँ ये व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये व्हाइट एज ब्यूटी सोप भी इसके साथ मौजूद है, सेम टू सेम है दोनों। लेकिन जब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम साबुन नहीं लगाते, हम फेस वॉश लगाते हैं, और आपको ये पता चले कि व्हाइट एज का ब्यूटी सोप भी मौजूद है, और आपको जब दुकानदार दे व्हाइट एज का ब्यूटी सोप तो आप ये बोलेंगे भाई क्रीम जे का है वह तो ग्रीन कलर जी आए, यानी कि नहीं डबी ग्रीन कलर जी आए, पर ही जो व्हाइट है जो जो फेस वॉश आ ही ऑरेंज कलर जो छो आए, तो तमाम मताइना में थोड़ो समझो तो ही शायद असा के दुकान वालों गलत प्रोडक्ट न थोड़े, बिल्कुल ये ना है बाबा। व्हाइट है जो फेस वॉश आ वो वाइटामिन सी ए वाइटामिन ई से तैयार थियल है, इन जो जो फॉर्म है वो तमाम चेंज कयो वयो आ है, इन जे अंदर जो आ वाइटामिन सी ए वाइटामिन ई के एड कयो वयो आ है। जो क्रीमी फेस वॉश आ तमा जी स्किन के ब्राइट कंदो आ, एंटी एजिंग जे लाया है, तमा जी उम्र अगर वधंदी तवा के को सुठो फेस वॉश या साबुन नथो मिले, तवा जे स्किन ते सूट नथो करे, त ना व्हाइट एज जो जेको ही विटामिन सी जो फेस वॉश है ना ये जरूर ट्राई करे दिस जो। इन जो जेको कलर आ ना वो ऑरेंज कलर आ है, ए व्हाइट एज जेका ब्यूटी क्रीम आ उहा तवा खबर आ ग्रीन कलर जी आ है। उनका अलावा अगर असा व्हाइट एज लवली क्रीम जे तरफ अचू था त व्हाइट एज जेका लवली क्रीम आ ही को फेयरनेस फार्मूलो आ है, अगर तवा फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करन चाहो था ई ताकी खबर ना है त बाबा असा चेहरे ते केडी फेयरनेस क्रीम सूट करे सके थी, तो व्हाइटिश लवली क्रीम जे तरफ जो ना मूव करे सको था। व्हाइटिश लवली क्रीम एकड़ी अल्ट्रा वाइटामिन्स जो फार्मूलो आ है, यानी कि हिन में इलाही जेके ना वाइटामिन्स एड थियल आ है, जेमे ट्री वाइटामिन्स जा कैप्सूल आ है, वाइटामिन सी आ है, वाइटामिन ई आ है, वाइटामिन बी थ्री आ है, वाइटामिन डी आ है, ये सब वाइटामिन्स तवाजी स्किन जला डाढा इंपॉर्टेंट हुंदा है। आई अगर तमाम भी चाहता तमाम जी स्किन ते जेका वाइटामिन सी कमी पूरी थी वने तो तमाम व्हाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमाल करे सगो था। आई व्हाइट एज लवली क्रीम जी कड़ी बीबी गाल आहे त व्हाइट एज लवली क्रीम न सिर्फ तमाम जी स्किन के खूबसूरत बणाईंदी बल्कि तमाम जे चेहरे ते जेको ना ही उस सजा जेके असरात पवंदा आहे ने जेके खतरनाक तमाम जी स्किन के सफा साड़ी छडींदा आहे, तमाम जी स्किन के सफा मारे छडींदा आहे, त उनन खां भी तमाम के बचाईंदी छो त व्हाइट एज लवली क्रीम जे अंदर सनस्क्रीन भी एड थियल आहे। आई व्हाइट एज लवली क्रीम जे अंदर जेका सनस्क्रीन एड थियल आहे त उहा तमाम जी स्किन जी प्रोटेक्शन कंदी आहे, तमाम जी स्किन के प्रोटेक्ट करने सिज जे खतरनाक असरातन का समझो था। तो व्हाइट एज लवली क्रीम सिर्फ न तमाम जे खूबसूरती के वधाईंदी बल्कि तमाम जे खूबसूरती जी हिफाजत भी कंदी, आई मुकम्मल जेको ना ही तमाम जबरदस्त एकड़ो प्रोडक्ट आहे जेको तमाम इस्तेमाल कंदा त ताके खबर पंदी त वाके तमाके री सुठी से इस्तेमाल कयो था। आई व्हाइट एज लवली क्रीम जेका ही लाइट पिंक आई व्हाइट कलर जो जेको ना ही डबो आ जे में तमाम व्हाइट एज लवली क्रीम जेका वा परचेस करे सको था। आई व्हाइट एज लवली क्रीम के इस्तेमाल करने तरीके कार बिल्कुल यू आए त तमाम डी जो भी लगाए सको था, रात जो भी लगाए सको था, जेमल तमाजी दिल चले ही वो प्रोडक्ट आ जेको बस तां लगाईदा आई तां चुटकिन में रेडी थी वेंदा बिल्कुल। अगर तमा के काडे वंजणो वा आई तमा जल्दबाजी में आए तमा मेकअप नथा करे सको, मेकअप जो टाइम कोने, वैसे गर्मी भी आए त गर्मी में मेकअप वैसे नहीं कयो तो बेहतर आए, उन सूरत हाल में तां वट व्हाइटिश लवली क्रीम अगर मौजूद आ त बस बाबा गाल ही खत्म थी वई। व्हाइटिश लवली क्रीम तां थोड़ी मिकदार में पांजे चेहरे ते अप्लाई कंदा, अप्लाई करण खां पहिरियां पांजो फेस वॉश लाज़मी कजो, इन खां अलावा तमा वडा भी लगाए सको था, तमा मर्द मायूं बार बच्चा हर कोई लगाए सके तो व्हाइटिश लवली क्रीम, तमाम हर एक इंसान वट व्हाइटिश लवली क्रीम तो मतलब हुजण घुर्जे, छो त ही एकड़ो तमाम जरूरत वारो आई तमाम इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट आहे।
ओके जी, उनखां अलावा मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जे बारे में बि, छो त तमामु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन खे न एक्नी प्रॉब्लम काफ़ी ज्यादा अची वेंदो आहे, ऐं एक्नी प्रॉब्लम जेके हूंदा आहिनि अगरि हिकु दफ़ा तव्हांजी स्किन ते अची वए त ॾाढा ख़तरनाक हूंदा आहिनि बाबा। उन जो वञणु जेको आहे न थोरो मुश्किल हूंदो आहे, तव्हां इलाही ट्राए करे ॾिसंदा आहियो, टोटका ट्राए कंदा आहियो, डॉक्टर्स ॾे वेंदा आहियो, तव्हांजो इलाही जेको आहे न बिल बि अची वेंदो आहे, ऐं तव्हां सोचींदा त बाबा कहिड़ी मुश्किल में फासी विया आहियूं, कहिड़ी मुसीबत आहे। त तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमाल करे सघो था। ही न सिर्फ़ तव्हांजे चेहरे जे एक्नी जो ख़ात्मो कंदो, बल्कि ही हिकिड़ो मेडिकेटेड फार्मूलो बि आहे, तव्हांजी स्किन जे मुताबिक तयार थियल आहे। हिन खे हर स्किन टोन वारो माण्हू लॻाए सघे थो। फुल डॉक्टर जी निगरानी में तयार थियल आहे, हिन जे अंदरि कोई बि केमिकल नाहे विधो वियो, फुल आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे जंहिंजे अंदरि जड़ी बूटियूं एड थियल आहिनि, ऐं तव्हांखे तमामु हिकिड़ो जेको आहे न परफेक्ट प्रोडक्ट मिली वियो आहे, जेको तव्हां एक्नी खे ख़तम करण लाइ इस्तेमाल करे सघो था। ऐं न सिर्फ़ एक्नी खे ख़तम कंदा, बल्कि तव्हांजे चेहरे ते जेके एक्नी जा निशान हूंदा आहिनि, कोई कट जो निशान आहे, कोई सड़न जो निशान आहे, या फिर तव्हांजे चेहरे ते ब्लैक हेड्स आहिनि, वाइट हेड्स आहिनि, या फिर तव्हांजे चेहरे ते पोर्ट्स आहिनि जेके ओपन थी विया आहिनि, या वरी तव्हांजे चेहरे ते एक्स्ट्रा ऑयल आहे, जेको एक्स्ट्रा ऑयल जॾहिं तव्हांजे चेहरे ते अची वेंदो आहे न, त हू एक्नी ठहण जो वजह हूंदो आहे, रीज़न हूंदो आहे। त अगरि तव्हां बि चाहियो था त हीउ जेको एक्स्ट्रा ऑयल आहे इहो स्किन तां ख़तम थी वञे, त तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब खे इस्तेमाल करे सघो था। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब इस्तेमाल तव्हां कंदा, सुबुह जो बि कंदा ऐं राति जो बि कंदा, जेके सफ़ा घणा एक्नी आहिनि, सफ़ा घणा आहिनि, त उहे तव्हां टे मरतबा करे सघो था। लॻाइण खां पहिरियां तव्हां पंहिंजा हथ ऐं तव्हां पंहिंजो फेस चङी तरीक़े सां वॉश कजो, जीअं तव्हांजी स्किन बि क्लीन हुजे ऐं तव्हांजा हथ बि क्लीन हुजे। क्लीन जॾहिं तव्हां रहंदा त तव्हांजे एक्नी खे जेको आहे न ठीकु थियण में टाइम थोरो लॻंदो आहे। जॾहिं तव्हां घड़ी घड़ी एक्नी वारे चेहरे ते पंहिंजा हथ फेरींदा आहियो, हथ लॻाईंदा आहियो, त तव्हांजा एक्नी जेके न वधी वेंदा आहिनि। ऐं इहा थोरी आदत बि पाण मां कढी छॾियो, त अगरि तव्हांजे चेहरे ते एक्नी आहे त पंहिंजे चेहरे ते घड़ी घड़ी हथ न घुमायो, समझो था, छो त कुझु चीज़ूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हां पाण अगरि कंदा आहियो ऐं तव्हांखे आदत हूंदी आहे, उन आदत जी वजह सां तव्हांजी स्किन ख़राब थी वेंदी आहे। सो इहे तमामु प्रोडक्ट आहिनि जेके वाइटिश वारनि जा आहिनि, जेके तव्हां इस्तेमाल करे पंहिंजी ख़ूबसूरती में इज़ाफ़ो आणे सघो था। ऐं अगरि तव्हां बि चओ था त असांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल न आहिनि, त पोइ तव्हां डायल कंदो बाबा, नंबर तव्हांखे ॿुधायां पई, नंबर डायल करे वठो, नंबर आहे 03-1250-9070, 03-1250-2590-7, ऐं उनखां अलावा ॿियो नंबर आहे 03-27-38-4309, 03-27-38-4309। ही नंबर्स आहिनि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते वाइट एज जा तमामु प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए सघो था। वाइट एज जा तमामु प्रोडक्ट अवेलेबल करायो, जीअं तव्हांखे वठण में आसानी थी वञे, ऐं तव्हां वठो, तव्हां इस्तेमाल कयो ऐं तव्हां सुहिणा थी वञो। बिल्कुलु ई तव्हांखे चवंदा भली करे आया, प्रोग्राम तव्हांजो पंहिंजो आहे, वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो तव्हां ताईं पहुचायो वञे थो। वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तव्हां खां सवाल पुछो अथमि, त तव्हां फर्ज़ करियो राति जो सुम्हो था, सुबुह जो उथो था, ॾिसो था बाबा दुनिया में सिर्फ़ तव्हां अकेला रहिजी विया आहियो, कोई बि कोन्हे को सॼी दुनिया में, त तव्हां छा कंदा?

गई थी पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए, कीजिए जरा पोस्ट को लाइक और शेयर ताकि पता चले कि कितने सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ साथ संजीव जयपाल हमारे साथ कहते हाय हेलो, अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद है सकरण से, आप हमारा शो सुन रहे हैं, मुमताज मलिक का गाना आपको जरूर सुनाएंगे मेरे भाई, आपको वेलकम कहा जाता है। और उसके अलावा हैं जी रिजवान अली कहते हैं कि दोस्ती ख्वाब है और ख्वाब की ताबीर भी है, रिश्ता इश्क भी है, याद की जंजीर भी है, वाह वाह वाह वाह। साजिद हुसैन सूमर हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, आप हमें सुन रहे हैं कहां से, डीआईजी ऑफिस लाड़काना से, आपका शो जबरदस्त है, मैं रेहान सूमरो, चलें जी रेहान सूमरो आपको भी वेलकम कहते हैं, साजिद हुसैन सूमरो आपको भी वेलकम कहते हैं।

ओके जी हुसैन मला हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम, कराची से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है। मोहम्मद जमान आ चुके हैं, वेलकम दिल से माई स्वीट बुआ जी, सुंदर बुआ जी अति सुंदर अति सुंदर, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये रिजवान हमारे साथ कहते हैं हाय हेलो बहना सॉन्ग सुनाए, कैसी हैं आप? अच्छा गाना लिखा है, चले मैं बिल्कुल गाना लगाने की कोशिश करूंगी। आप हमारे साथ मौजूद ही पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। रमजान अली हमारे साथ हैं, हाय बहना आप कैसी हैं, शो आपका वेरी वेरी नाइस है, थैंक यू रमजान भाई। मोहम्मद समान कहते हैं नन्ना ये आगड़ी सीटिंग आ शादी थे ला जैन जी वे कबूल कर। अच्छा खलील अहमद भाई हमारे साथ है, कहते आर जे सिद्रा मुस्कान मेहरबानी करे थोड़ो घट मिठो गालायो, रोज रोज अवां जो प्रोग्राम बुधी हाणे घर वारा चवन था रेडियो बुधी रहो, रेडियो बुधी रहो आई या कैसा न बिल्कुल चो बबर रेडियो बुधू था आई सिद्रा जो प्रोग्राम बुधू था जैमे सिद्रा असांखे बुधाई थी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में, आई तव्हां वाइट एज जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो कोन? खलील भाउ बुधायो त सही। अरे स्मार्टू गोपांग आ चुके हैं, हाय वालेकुम अस्सलाम, कहते मैं भी आ गया काफी डेज के बाद, कंबर सिटी से सुन रहा हूँ, शो इज वेरी नाइस, सॉन्ग तू सोना मुझी जान आही सिंगर फायजा अली, ओके लगाते हैं। मोहसिन अली हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम, लाड़काना से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। और नखा अलावा है जी हमारे साथ इखलाक भाई, कहते नाइस व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट, हाँ जी कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं बताइए जल्दी से।

जो लोग पोस्ट को लाइक नहीं करते, मैं सोचती हूँ कि भाई ये जो यहाँ पर लाइक ना करके आप कंजूसियाँ करते हैं, ये किस काम की कंजूसियाँ, क्यों करते हैं ऐसा, बताएं मुझे। अच्छा जी, जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और बताइए कहाँ कहाँ पर वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं और कहाँ कहाँ पर आप अवेलेबल कराने वाले हैं और कौन कौन लोग हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सी ऐसी समाते हैं जो भाई इस्तेमाल करने के बारे में अभी तक सोच रहे हैं। सोचना आप इतना मत सोचिए, जल्दी जाइए, परचेज कीजिए और इस्तेमाल करके बताइए आपको कैसे लगे वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट। अच्छा, सुमाटो गोपाल कहते हैं कि मां न तो अचान त गुम थी वञा थो, तुझे शहर जे रस्तन तां लंघी वञा थो, पर तोखे मुंजी का याद भी न थी अचे, मां तुझे दिल मां जण कडहिं गुजरी ई नाहां। ओके, अच्छा गुलाम फरीद बलोच हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ जी, आप बताएं। और फायजा का गाना लगाते हैं, बस आप थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। दर्द दिल कहती है कि चंदा मेरी प्यारी सिस अलीसा शो सुन रही है मेरे साथ और गर्मी है लाड़काना में, आज मौसम थोड़ा ठीक ठाक है। अच्छा आदिल कहते हैं कि कुछ लोग दलील से नहीं मोहब्बत भरे लहजे से जीत लिए जाते हैं, मुझसे बातें करके देखो मैं बातों में आ जाता हूँ।

समझण जी जिम्मेदारी हर कंहिंजी पंहिंजी बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं वाइट एशियन ईस्टर्न ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ईस्टर्न ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

दुर्भाग्य ते हेलो हाय हम भी अच गया की आयो सब खुश आयो सॉरी अदा कुछ दिन छुट्टी कई आ त कम थोरो वधिक आ हन करे तवा के घर टाइम दिया पयो दिल में न कजो दिमाग में कजो न न बिल्कुल खबर आ मुखे जदे इंसान छुट्टी कनवा त थोरो कम जको ना वो वधी वेंदो आ सो डोंट वरी अच्छा उनके अलावा मोहसिन अली हमारे साथ है वालेकुम जी मोहसिन वालेकुम अस्सलाम मोहसिन भा तमाम लाड़काने खास के ज्वाइन करवाए थैंक यू सुमाटो गोपाल के थे टॉपिक आंसर रेडियो पर आपको आपका प्रोग्राम सुनूंगा आपके अच्छा मैं भी तो फिर गायब होंगी ना ये भी तो सोचे अच्छा अली रज़ा हमारे साथ ही अली रज़ा भाई दुबई से हमें सुन रहे हैं थैंक यू वेरी मच भाई जान खुशामदीद कहा जाता है किशोर भाई कहते हैं टॉपिक में नेटवर्क चेक करूंगा वो है या वो भी गया वो भी गयो तो फिर क्या हो अच्छा खलील अहमद कहते हैं सब खां पहरी माँ अल्लाह जो शुक्र अदा कंदसि त मां जिंदा आहियां पोइ पूरी दुनिया में घुमी ॾिसंदसि त वाकई को बि इंसान बाक़ी नाहे या न बाक़ी आहे या न जेकॾहिं सच पिच मां अकेलो हुजां त अल्लाह खां दुआ कंदसि त मूंखे हिमत ॾे छो त इंसान अकेले ज़िंदगी न पर गॾिजी रहण सां इहा हक़ीक़त वैसे तव्हां सही था चओ खलील ऐं मोहबतूं आहिनि तव्हां असांजे प्रोग्राम जो हिसो आहियो लॻे थो पहिरियों मरतबा असांजे प्रोग्राम में शामिल थी आयो सो वेलकम चाचा खालिद कहते आई एम बॉय नो डाउट यस यस एग्री करते हैं आप जब से डी स्किन प्योरी क्रीम लगा चुके हैं ना तो भैया मानते हैं कि चाचो जवान थी हुआ तो बिल्कुल अगर तव्हांजी भी उमिरि वधंदी वञे थी तव्हां परेशान आहियो बाबा हिन रिंकल्स जो छा कयो वञे त तव्हां रिंकल्स खे कंट्रोल करे सघो था जॾहिं तव्हां वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा आहियो वाइट एज ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल सां तव्हांजे चहिरे जा रिंकल बि ख़तम थी सघनि था तव्हांजे चहिरे ते निशान आहिनि अखियुनि जा हल्का वधी विया आहिनि या फिर एक्नी मार्क्स आहिनि कुझु बि आहे कहिड़ो बि प्रॉब्लम आहे तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करे पंहिंजे मसले खे ख़तम करे सघो था सो बाबा जल्दी कयो देर न कयो छो त सभु लॻाइनि पिया तव्हां ॾोहु कयो छा भला लॻायो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे वापसी थोरी मोटी तव्हां ॾिए अचूं था साढी नवनि जो इते वेठा हुजो मां हीअं वञो हीअं मोटा थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए खूबसूरत हो जाइए

0: It's 2 p.m. This check is brought to you by
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आप सुनेंगे एफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम।
4: तो सऊदी अरब जे बहरी जहाज़न ते हुसैन जे हमलन जी सख्त लफ्ज़न में मज़म्मत। सऊदी अरब सां मुकमल लेखीअ जो इज़हार। शहबाज शरीफ चयो त मां फील्ड मार्शल ऐं क़ौम सऊदी क़यादत ऐं अवाम सां गॾु बीठल आहे। सऊदी बहरी टैंकर्स ते हमला कंहिं बि सूरत में क़बूल जोगा न आहिनि। हमला आलमी कानूननि जी सिधी भञकड़ी आहे। अहिड़नि क़दमनि सां इलाइक़े जी सलामती अमन खे नुक़सान थी सघे थो। पाकिस्तान सऊदी अरब जी सलामती, ख़ुदमुख़्तियारी ऐं खुशहालीअ जी हिमायत जारी रखंदो। सऊदी वलीअहद पारां पाकिस्तान जी मुस्तक़िल हिमायत ऐं वेझन लाॻापन जी साराह कई। ईरान खे मुआहिदो न करण जी घरी क़ीमत अदा करणी पवंदी। ईरान जे होश में अचण ताईं हमलनि में वाद थींदी रहंदी। मनीला में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अमेरिकी परॾेही वज़ीर मार्को रोबियो चयो आहे त ईरान वाज़े तौर ते मुआहिदे लाइ तयारु नाहे। ईरानी होसिन खे बि छिकताड़ में शामिल करे छॾियो आहे। ॾिसूं था हाणे छा थो थिए। उमीद आहे त हुसी हमला रोके छॾींदा। ईरान खे बि बहरी जहाज़न ते हमलनि जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। एशियाई पाणियुनि में चीन जे सरगर्मियुनि ते गणती आहे। अमेरिका इतिहादिन जी हिमायत जारी रखंदो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
6: ढाडो सुठो
5: GAFM 88 नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
9: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
10: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
10: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252578
10: जी हा, 2315525786
9: GAFM रेडियो नेटवर्क,
10: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन डेरा पर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सिद्रा आपके साथ है। मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे और अपने होने का एहसास दिलाएंगे। बिल्कुल जी, शामली प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, मुझे 8881 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं तो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदी, ताकि मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और जनाब इसी के साथ साथ मैंने पहले आप लोगों को व्हाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, अब आप ये सोचेंगे कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में हमें कैसे और कब पता चलेगा। तो अभी जो बारी आ चुकी है वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की आ चुकी है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जो है ना आप लोगों को बताया जाए, तो सबसे पहली बात जो है बताने वाली वो ये कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश अवेलेबल है। ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम ना सिर्फ एक नाइट क्रीम है, ना एक सिर्फ ब्यूटी क्रीम है, बल्कि ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है उन खास करके उन लोगों के लिए, उस स्किन के लिए जिनकी काफी ज्यादा सेंसिटिव स्किन होने की वजह से वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते और वो ये सोचते हैं कि भाई हमारे साथ ही आखिर ये क्यों होना था। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारी स्किन काफी ज्यादा खराब है, कोई प्रोडक्ट नहीं लगा पाते, तो आपने भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि मेडिकेटेड फार्मूला है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर इसे तैयार किया गया है, इतना जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है ना कि जब आप लगाएंगे तो कहेंगे आए हाय चस्सी आ गई। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि भाई जान बहुत ही जबरदस्त किस्म के फार्मूले के साथ तैयार की गई है, जिसके अंदर आप लोगों को पता होगा कि सिर्फ दो दिनों में आपको रिजल्ट देती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को जो है बेहतरीन नतीजे अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, ताकि आप लोगों को और भी ज्यादा से ज्यादा अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहें। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि विटामिन ई बी, माइक्रोबीट्स फार्मुलेशन, अल्फा अर्बुटीन, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, ये सब चीजें मिलकर जनाब आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की जो खूबसूरती है वो जनाब इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि आप लोग खुद ही कहेंगे कि हमारी जो स्किन थी वो पहले तो उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता था, और उस सूट ना करने की वजह से आपकी जो ये क्रीमों की तरफ तवज्जो है ना वो थोड़ी सी गायब हो चुकी है। आप ये सोच रहे हैं कि भाई क्रीमें हमारे लिए नहीं बनी, तो आप एक मरतबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जब आप इसे लगाएंगे तो कहेंगे भाई ये इतने मुनासिब पैसों में हमें इतनी अच्छी चीज मिल रही है। तो ये है कभी कभी जो होता है ना कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत से जो है ना वो ऐसा हम सीन बना देते हैं कि भाई आप लोगों को कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में भी बता देते हैं जो कि आप लोगों के मुनासिब सी कीमतों में मिलने वाले प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देकर जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपके पास कोई अच्छा प्रोडक्ट मौजूद हो तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। और ये एक नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ये आप लोगों को बताते चलें कि जनाब ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है। और ये जो सीरम होता है ना ये सीरम आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। ये तमाम क्वालिटीज होती हैं जब आप डी स्किन फेस वॉश का यूज करेंगे। और इसके अंदर जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम का ऐड किया गया है तो भाई क्या बात है, इतना कमाल का ये कॉम्बिनेशन है कि जब आप लगाएंगे तो खुद ही कहेंगे कि इतने अच्छे प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है तो आप उनसे फायदा उठाइए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, दोनों चीजें साथ में लगाइए ताकि आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहें। ओके जी, इसी के साथ साथ अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है और हम कैसे अवेलेबल कराएं, कैसे परचेज कर सकते हैं, तो बस आपको जो नंबर बता रही हूँ ना वो नंबर आप डायल कीजिएगा, कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए, उन्हें बताइए कि आप अवेलेबल कराना चाहते हैं, आपके एरिया में नहीं मिलते। तो नंबर है पहला जो कि आप नोट करेंगे, ओके जी 03-12-50-25-907 03-12-50-25-907। और दूसरा नंबर है 03-27-38-43-09 03-27-38-43-09। ये दो नंबर्स हैं जो कि आप डायल कर सकते हैं, अगर एक नहीं मिलता हो, एक पिक नहीं हो, तो आप दूसरे के ऊपर कॉल कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके
ओके जी, सो जल्दी जल्दी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाइए, इस्तेमाल करते जाइए और खूबसूरतियाँ हासिल करते जाइए, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं. सो जनाब यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश, ये जो आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक ही तैयार किए गए, इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको मजे आ जाएंगे.

ओके डीजल, मैंने आज आप लोगों से टॉपिक पूछ लिया है कि आप मुझे बता रहे हैं, फर्ज कर लें अगर आप रात सोते हैं, ठीक है, सुबह उठते हैं, आप देखते हैं भाई दुनिया में आप अकेले रह गए हैं, सारी दुनिया के जो लोग हैं वो गायब हो चुके हैं, आप दुनिया में अकेले हैं, तो आप क्या करेंगे? इसी के साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस जरा पैनल की जानिब आ जाते हैं। ओके जी, हमारे साथी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी थर्सडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? कहती हैं सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात सुमेरा बाजी और सब स्वीट सिस्टर्स के नाम। ओके जी, आप सबको वेलकम एंड थैंक यू सो मच। फजीला सिंधी आप हमारे साथ मौजूद।

बिल्कुल जी, सोना मुझी जान आई ऐं वरी तोते कुर्बान आई। उन खां अलावा कश्मोर भाई नी कश्मोर से अखलाक भाई हमारे साथ हैं। सिदरा गाना लगाइएगा, बिल्कुल तांचो गानो हलाइंदासी। और मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहती हैं, सलाम अलैकुम बाजी, वाइट एज ब्यूटी क्रीम बड़ी जबरदस्त है, आप लगाते हैं क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। और ये हमारे साथ अल्लाह रखियो मेमर हजार खान कोकरानी फ्राम लाड़काना, अस्सलाम वालेकुम। आपने शायरी लिखी है, तमन्ना से नहीं तन्हाई से डरते हैं, प्यार से नहीं रसवाई से डरते हैं, मिलने की तो बहुत चाहत है पर मिलने के बाद जुदाई से डरते हैं। सिदरा मुस्कान जी, आपका शो नाइस है, प्लीज ये गजल लगाइएगा। बिल्कुल भाईजान, आपके लिए गजल लगा देंगे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और ये प्रिंस अहमद अली रिंद हमारे साथ है फ्राम अहमद अब्बास, सलाम पाक आर्मी स्वीट शो, कहते हैं इस मंथ के सारे शोज एक से बढ़कर एक थे, प्लीज दीबा शहर का कोई भी गाना लगाइएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ऐसा मैसेज करके आप दिल खुश कर देते हैं। थैंक यू। ओके जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल भी कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाएं भाई। अगर आप खूबसूरत बनना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना, तो कीजिए। और यासिन गुटाड़ो भाई हमारे साथ है, अल्लाह जो शुक्र आ उम्मीद आहे अवां भी खुश हूं दो। सदरा भेण शायद बबर जो कलाम बुधराए जो मोला सलामत रखे अवां के जी जी भा, बिल्कुल कोशिश करूं था मोहब्बतों ऐं तां प्रोग्राम बुधो पया। ये हमारे साथ है सूफी आसिफ विरोही सदा के बाद पता नहीं क्या लाड़काना से आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा चाचा खाले तमाम भी गाने की फरमाइश कर या हलाइन जी फुल कोशिश करूँ था, ठीक है। और ये मौजूद है सिदरा भाजी, आप कैसी हैं आप? मैं उस्मान खोसो यूके फ्रॉम नौशेरो फेरोज बाजी, हमने भी ये वाली क्रीम और फेस वॉश इस्तेमाल किया है, अच्छा रिजल्ट दिया है बाजी। मुझे सॉन्ग सुनाना मोकलानी हुई या हुयो को कहे, रऊफ मक्सी का गाना है, प्लीज प्लीज प्लीज लगाइएगा। मां कोशिश क्या थी भात आजी पसंद हलाइंदी और यूके भात आज मोहब्बत एंड प्रोग्राम बुधो पिया। अरे यूके सन प्रोग्राम बुधे तो समझो था। ओके जी, ये हमारी साथ हैप्पी गर्ल कहती हैं, कैसी हो? मैं दूसरे मोबाइल से आपको मैसेज कर रही हूँ, पहले मोबाइल से क्यों नहीं कर रही जो दूसरे मोबाइल से कर रही हो? उनके अलावा कहती हैं, अच्छा यूके भाई कहते हैं बाजी में अगर अकेला बचा तो सबके खाने वाली चीजें खा जाऊंगा, इतना खाना अकेले आप कैसे खा सकते हैं यूके भाई? वैसे ये बात है, जो फूडी लोग होते हैं ना वो चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन उनको हमें खाने की पड़ी रहती है। अगर मैं भी ये सोच रही थी कि मैंने जो सवाल आप लोगों से पूछा है, अगर हाँ ये मैं खुद के ऊपर बोलूं तो भाई मैं ये कह सकती हूँ कि भाई मैं जो है ना बहुत सारा खाना खाऊंगी, हम भी फूडी इंसान है।

आवाज़ ताईं वा शमन जो गानो बुधो पया। अच्छा इरम, आप हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, आप हमारा शो सुन रही हैं। गोठ मोहम्मद तैयब थेबू खां भी बोला थेबू कहती तमाम शो वेरी वेरी नाइस है, सलाम तमा के, वालेकुम असलम प्यारा भा तमा के। और हमारे साथ हैं जी यूके भाई, आपने वही मैसेज दोबारा से सेंड कर दिया है, थैंक यू उसके लिए। और हबी बोला थेबू कहते सॉन्ग बुधरायो तेरा मेरा है प्यार अमर हाजिर हाजिर। इरम कहती यार मैंने अच्छा कहती है स्टोरी समझने, इसको स्टोरी को समझने के लिए बहुत जो है ना बड़ा सा दिमाग होना चाहिए जो मेरे पास भाई कैसी बातें कर रही हैं।

ओके ओके ॾिसी वठूं था अहिड़ो देश आहे त पोइ हलिया हलंदासीं। अच्छा ये हमारे साथी अदी सिद्धो आप से रिक्वेस्ट है, ये आप कैसे कह सकते हैं हुरिया आपने मुझे देखा है क्या। और नखा अलावा अल्ताफ कोसो जागजानी हमारे साथ कहते नाइस शो अदी प्लीज बरकत अली वफा की तीन रही या डेडिकेट अजरा कोसो एंड यू ओके भा कोशिश कयूं था। ये हमारे साथ हैं प्लीज स्वीटी सरमन सिंधी का गाना लगाइएगा प्रिंसेस नवाब शाह से रानी बलोच हमारे साथ हैं। क्या बात है नवाब शाह की रानी हमारे साथ हैं। वेलकम कहते हैं रानी बलोच को। हलिया चो बाबा।

अच्छा अब्दुल रजाक बलोच भाई हमें सुन रहे हैं, दादू से वेलकम करते हैं। मोहसिन अली हमारे साथ है, मोहसिन अली कहते हैं ओके जी। मोहसिन अली आप मीरो खान चौक लाड़काना से हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बात है, आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। मोहम्मद जमान भाई आपको भी वेलकम इन खुशामदीद। और हमारे साथ हैं यहाँ पर इनोसेंट रांझा, कहते हेलो कैसी आप, आपकी आवाज इतनी स्वीट कैसे, वो मैं नहीं बता सकती अल्लाह सही था जो कट वाके वडो हो। उन खां अलावा जो तुम भी अगर डे स्किन ब्यूटी क्रीम कौन लगाई आए तो बाबा जल्दी लगाए, छाजो इंतजार कयो पया, केड़ी शय आ जगह तवा के इंतजार कराए पई, तवा भी डे स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो जी, तवा भी सोणा सोणा थी वनो, सोणा सोणा प्यारा प्यारा मीठा मीठा। आई डे स्किन ब्यूटी क्रीम जकाई तवा जी हर जनरल स्टोर से मिली रही है, नथी मिले तो जके नंबर बुधाया उनन ते रातो करे बैठो, कॉल कयो या वरी मैसेज कयो उनन के बुधा त बाबा फलाणी जगह ते कौन थी मिले वटी स्किन ब्यूटी क्रीम। आई डे स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराए तो नसा गट तवा डे स्किन फेस वॉश भी वठजो, वो भी अवेलेबल कराए, बई चीजों गड वठो, बई चीजों गड लगायो जे ता सफा सोना थी वनो, परफेक्ट परफेक्ट सोना। ओके टाइम थी वाई शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो जल्दी मोटी तवा लेंदासी, तवा करी ने मजो इते बैठा हो जो मा ओही वनी ओही मोटा थी, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाई टेशन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाई टेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हणो जे ता भी सोना थी।

0: FM 88
1: सिंध की आवाज। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप, जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
2: 90.4 कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252578
3: जी हाँ 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो,
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

वेली वापस अची वया हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम में जंहिंजो नालो आहे वाइटेशन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड आहे बाबा वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट अगरि तव्हां बि सुहिणा थियणु चाहियो था त पोइ इस्तेमालु कयो नी वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। अच्छा हिकिड़ी ॻाल्हि आहे जेके माण्हू वरी इहो सोचींदा आहिनि

प्रोग्राम जो लास्ट लिंक में अच्छी वाया थोड़े सारा माओ से गुड मौजूद आज सभी जो मोहब्बत आज बाबा प्रोग्राम बुध पाया तुम पांच प्रोग्राम है तुम बुधा तो केर बुध मां अकेली वही प्रोग्राम क्या किथे मजो इंदो सो ताजो होजण ही ताजो बुधण बई चीजों जरूरी है उनका अलावा तमा अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करण चाहो था तो बिल्कुल तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो उनका अलावा अगर तमा पाजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराण चाहो था तो उन जलाए तमा के नंबर बुधाया पई नंबर से रातो तमा लाजमी कंदा कयो नंबर अगर तमा के एकड़ो बंद मिले तो ता बेते ट्राई करे दिसो एकड़ो तो खुले ली हुंदो नी बिनी नंबर मा तो एकड़े ते लाजमी ता ट्राई करे दिसो कॉल कयो या वरी मैसेज कयो उनन के दसियो बाबा फलाणी जगह ते असा आयो फलाणी जगह ते ताजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो मिले जी हूँ बेचारा अवेलेबल कराए सकन समझो था अवेलेबल कराइंदा तो आसानी होती भजना में वा इंदा इस्तेमाल कर सो वो सब का पे अवेलेबल करायो पोए वो पोए इस्तेमाल कर ओके जी शायद बबर जी गाने जी फरमाइश कई हुई तमाम कहीं शायद वरी गानो चयो त बाबा पांजी पसंद जो हलायो सो पांजी पसंद जो हलायो सी वणियो हो तो ताके मास्टर मंजूर जी आवाज में या मास्टर मंजूर या मंजूर सकरान बिनिन में मा थोड़ो कंफ्यूज थी वेंदी आया सो बिनिन मा मडे एकड़ो आए गानो बुदना सी डाडो भलो गानो आए अई अई उनखा अलावा इरम कहती आप ही जवाब है जब कोई ना होगा तो जो जो चीजें खाने के लिए मेरा दिल चाहेगा मैं वो सब चीजें खाऊंगी आई एम अल्सो फूडी बंदी इरम मोगेरी फ्रॉम कंबर सिटी क्या बात है सैया बाबा अच्छा मामा समान भाई कहते दुख की खबर मरहूम यूफोन जो सोट टेलीनार जो चाचो जोंग जो पी मोबलिंग खान इन दुनिया में लाडाणो करी वो सच में अली डाडो अफसोस थियो अच्छा ये है हमारे साथ हैप्पी कहती है कि आपके सवाल का जवाब है तो अच्छा कहती है जब मैं नींद से उठूंगी और मैं सोचूंगी ये सब कैसे हो गया ये बात सोचने वाली है हाँ बिल्कुल सोचने वाली है आप सोचिए सोचिए और साथ में मुझे ये भी बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रही है या डी स्किन का फेस वॉश लगाना शुरू किया है दोनों चीजें कमाल है भाई अब आपके ऊपर है कि आप क्या इस्तेमाल करेंगे अच्छा रिजवान अली बलोच हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको भी अच्छा किशोर भाई कहते अदी जिते कोशिश थिए थी उते समझो कोशिश ही थींदी हलंदो कोन ये ना हलाइंदा भी आयो

में जो पहली बार आपके शो में आता है आप उसको सर से पांव तक खरीद लेती हैं। बाकी यहाँ छाबला या मुखे थोड़ी गलत फैमिली थे पहले। अच्छा अली मुर्तजा की थी माबी अची वया मेरा सॉन्ग लास्ट में याद आहे या गुचड़ मुचड़ थी ना बाबा यादा यादा गाना विसरंदो। अशफाक हुडो मरसद मौजूद है नाइस शो। थैंक यू रेहाना सुन रही है बखर से। रेहाना आपको भी वेलकम कहा जाता है।

कोन बाबा वेल मानो कोनन मोटल पर ताजी वेल खूबसूरती ताके वापस मिली सके थी सो ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करण वारा आयो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा त ताजी जेका खूबसूरती करे गायब थी वे ना वो ताके वापस मिली वे सो ता भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे दिसो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका विटामिन ई बीट्स ए माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन से तैयार थे लाई उन के अलावा सिर्फ ब रातन जे इस्तेमाल में जेको ने ताके सफा वीआईपी सफा सोनो रिजल्ट भी दीदव सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका ता इस्तेमाल कंदा हर स्किन जी मुताबिक तैयार थे लाई सेंसिटिव स्किन वारा मानो तो लाजमी लगाए डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका मेडिकेटेड फार्मूलो है डॉक्टर्स की निगरानी में तैयार कई आ बाबा इन क्रीम के असा सो तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल लाजमी करो जी तुम खूबसूरती मिली जेका तुम हमेशा हासिल करना चाहो पाया।

ओके जी ओके, गाना बहुत अच्छा था ये वाला गाना, जिसकी फरमाइश एक भाई ने कर दी थी पैनल पर, तो मैंने सोचा ये वाला गाना भी सुन लेते हैं। अब बस लास्ट लिंक में तव्हांखे डस डस गाना बुध रही थी वेंदा।

0: ओ क्रिसो अज मामा का सवाल पुछो हो त तमा इमेजिन कयो तमा राजो सुमो था ए ता सुबह जो उठो था ठीक आ उठन सा तमा के खबर पई थी त सडी दुनिया में सिर्फ तमा अकेला रहजी वयायो कोई भी कोने को कोई भी कोने को त तमा अकेला छा कदा बस यो बुधाय जो मके अखलाक भाई कहते आंसर रंगीला कारतूस उडाडींदासी मन को लभी पर ओके मोहम्मद मीरन जखरानी भाई हमारे साथ जेकब आवाज से वेलकम करते हैं आपको
1: जिस धूप के दिल में ठंडक थी वो
0: दर्द दिल कहती है चंदा वाकई बहुत दुख हुआ सच में हाँ जी दुख की खबर थी अच्छा था जो यादा यादा अजा मुख्य यादा सुधरो सुधरो कमिंग द वे
1: साथ गई इन जलती बलती गलियों में इन जलती बलती।
0: अच्छा फजीला कह रही है कि मेरे लिए दुआ करिए मैं बीमार हो गई हूँ फजीला के ना सारे लोग दुआ की थी वो जल्दी से ठीक हो जाए हमारी बहुत अच्छी लिसनर है और वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल भी करती है तो दुआ कीजिएगा मुनवर खोड़ो हमें सुन रहे हैं कहते मुनवर खोड़ो जादो वाहन खां असा के ज्वाइन कर वाह वाह तमाम जो मोहब्बत हुआ प्रोग्राम बुध पे अच्छा हैप्पी कहती है कि मैं क्रीम यूज नहीं करती मेरी उम्र अभी 15 साल है बाकी फैमिली में कहा है मेरी फैमिली क्रीम यूज करेगी और मैं सोप यूज करूंगी नहीं आप डी स्किन का फेस वॉश लगा सकते हैं तो डी स्किन का फेस वॉश ट्राई करके देखिएगा ठीक है

भई हा भई ॾाढी दुख जी ॻाल्हि आहे जेका हीउ चाचो ॿुधाए वियो. सो असां ॿियो बि गानो ॿुधंदासीं जेको असांजी लिस्ट में मौजूदु आहे. हीउ आहे हुमेरा चन्ना जी आवाज़ में गानो. बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे प्रोग्राम वाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें मुझे जल्दी से बताइए, ताकि मुझे भाई तसली थी वने, मुझे दिल के सुकून मिले था. हाँ, मुझे लिसनर लगाए पाया.

साईं वाह, वाह साईं वाह, भलो गानो। अली मुर्तज़ा कहते हैं कि खूबसूरती जी गाल ये था कयो जो कंपनी असा के गिफ्ट कंदी। बिल्कुल कंपनी का गिफ्ट कराइंदासी ताके। बस इरफान साहब जको है ना उम्रे का मोटी थे तो उनन के चोंदासी बाबा कोड़ो प्लान ठायो जो सा लिसनर्स के ये सफा जको है ना गिफ्टियों हणो मुंह में सोना थी वन एक दफा तक गिफ्ट कदी तो दिल चवंदी बाबा हाँ असा वो छो तो तक दिल सरंदी को डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजन या वाइटी जो प्रोडक्ट हुए वो सब तुम लगाइंदा बार बार लगाइंदा तुम चवंदा तो बस हाँ असा सोनो थियणो है। अच्छा राशिद रिंद असा गुड मौजूद है भा तुम मोहब्बत प्रोग्राम बुध पाया दर्दी दिल कहती है कि फिर मैं दबाकर बिरयानी खाऊंगी घूमूंगी फिरूंगी जब थक जाऊंगी तो फर्ज करूंगी सारी दुनिया वापस आ गई। ओके है ना ये बढ़िया था जी मुनव्वर खोलो तुम्हारे साथ गुड मौजूद आए थैंक यू सो मच मच मच। अच्छा मोइन बिरोही भी असा गुड मौजूद है मीरू खान चौक लाड़काने का तुम असा ज्वाइन कर थैंक यू सो मच पांजे मच ते खिलती अच्छे

ॾिसो हिते अख़लाक भाउ सही ॻाल्हि कई आहे त क्रीम हणी आहे न पोइ प्यारे जे लाइक़ थी वञे हा सफ़ा सही ॻाल्हि अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणंदा पोइ तव्हां बि प्यारे जे लाइक़ थी वेंदा सो तव्हां सभु डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो जीअं तव्हां सभु सोणा सोणा थी वञो प्यारा प्यारा थी वञो ऐं तव्हां बि लाइक़ थी वञो।

ओके भाई, सो ॾाढी वीआईपी शायरी हुई, ॾाढो वीआईपी गानो हुयो, ॾाढो वीआईपी आवाज़ हुयो अदीअ जो. सो बिल्कुल हाणे ही वारो सॉन्ग आहे लास्ट में जेको असां ॿुधंदासीं. मेरा ये भरम था मेरे पास तुम थे. ओगरी सो प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप लोगों तक पहुंचाया जाता है. अगर अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि हम इस्तेमाल करेंगे तो बाबा एतरो न सोची ना कयो. अगर तुम चाहो था तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल थी वजन या फिर तुम पान अवेलेबल कराने की कोशिश में आया तो जल्द नंबर से राबो कर पाजे करीबी सिटीज में अवेलेबल करायो. चाहे तुम कहीं भी गोठ में आयो, शहर में आयो, किथे भी आयो, जल्दी जल्दी तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करणु शुरू कयो. ठीकु आहे, समीरो चौहान भाउ सां गॾु मौजूदु आहे. मौसम कहते में व्हाइट एश फेस वॉश यूज़ कंदो आहियां. वाह भा वाह, अच्छा ॻाल्हि कई तव्हांजी. उन खां अलावा दर्दी दिल कहती है सिदरा थैंक यू सो मच मच मच जी, आपका भी मच मच मच. और जवार मोहम्मद पटेल चंपानी भाई हमारे साथ है, आपको भी वेलकम कहा जाता है. ओके जी, अली मुर्तजा कहते हैं

वैसे कॾहिं कॾहिं वाक़ई असांजो दिलि चवंदो आहे त हिन दुनिया में सिर्फ़ असां अकेला हुजो, कोई बि न हुजे, ऐं अगरि वाक़ई ईअं थी वञे त पोइ सोचो त केॾो मतिलबु जेको आहे न इंसान पाण खे अकेलो फील कंदो. हिकु इंसान अकेलो त मतिलबु रही नथो सघे न. हे जेको सिस्टम अला पाक ठाहियो आहे त उहो सफ़ा सही ठाहियो आहे. माण्हू माण्हू सां ॿधियलु आहे. ऐं हुन खां अलावा तव्हां पंहिंजो जेको आहे न ख़्यालु रखंदा कयो ऐं पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखंदा कयो. चाहे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी वाइट एज जा प्रोडक्ट्स हुजनि, तव्हां इस्तेमालु कयो जीअं तव्हांजी ख़ूबसूरती सफ़ा बरक़रार रहे ऐं तव्हां हमेशह सुहिणा सुहिणा रहो. अच्छा, ये हमारे साथ फौजी पठान खान खोसो भाई हैं. तव्हां गानो लिखियो आहे, तव्हांजो गानो बिल्कुल नेक्स्ट प्रोग्राम में हलाईंदासीं. आज़ाद अली खोसो, शहबाज खोसो, शहबान खोसो खे तव्हां डेडिकेट कयो आहे. सो थैंक यू सो मच तव्हां सां सॻु मौजूदु आहियो. वरी तव्हां सां जेका मुंहिंजी मुलाक़ात थिए पई उहो 5 बजे वारे प्रोग्राम में थिए पई. सो पंहिंजो इलाही सारो ख़्यालु रखंदा ऐं मूंखे 5 बजे वारे प्रोग्राम में जॉइन कंदा. सो सना मोकिलाणी नाहे सिन सलामत सा सलामत. अलाह हाफ़िज़, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर.

0: बबल हुई धरने ते पुलिस चढ़ाई है। गिरफ्तारियों खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में सियासी समाजी धुरी ने वकीलों जो एहतजाज खैरपुर लाड़काणो बेहण कोटड़ी में वकीलों एहतजाज किया। राधण में सियासी समाजी धुरी ने शहरी रैली कढ़ी धरणो हयो। कंदकोट में एसपीपी कारकुनन जो मुजाहरो कयो। बबुर लोहे धरने के मुजाहरीन के आजाद करण जो मुतालबो। बलोचिस्तान के इलाके मस्तोंग में हथियारबंदन जो हमलो। सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ गार्ड समेत शहीद। जैकमाबाद वासी एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत ब जणा जख्मी। बलोचिस्तान के वडे वजीर दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जो हुक्म दई छो। सरफराज भुक्की है तो सेशन जज ते हमलो रियासत ते हमलो है। पंजाब में केपीके में बरसात सबब तबाही। बिन्हीं सूबन में 43 जणा फोत 200 का वधीक जख्मी। पीडीएमए पंजाब मौजूद सूबे में बरसात दौरान मुख्तलिफ हादसन में 21 शहरी फोत 153 का वधीक जख्मी थे। पीडीएमए केपीके मौजूद सूबे में बरसात दौरान फोतन जो अंग वधी 22 थी वयो आहे। कराची में फुर मज़ाहमत ते डॉक्टर के कत्ल कंदड़ टे शकी जवाबदार मुबैना पुलिस मुकाबले में मारजी वया। पुलिस मूजिब कराची टूर प्लाजा बरसा अहमद बिरोही गोठ में जवाबदारन की निशानदेही ते छापो हयो। जै दौरान नामालूम जवाबदारन की फायरिंग में सुरेश रामचंद अनिल मारजी वया। एक पुलिस एहलकार जख्मी थियो आहे। कराची पुलिस कलेक्ट्रेट में फुर मज़ाहमत ते कत्ल थियल डॉक्टर आकाश केस में सुरेश रामचंद अनिल के जाम छोरे मां गिरफ्तार कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

एक बूढ़ी औरत मस्जिद के सामने भीख मांगती थी। एक शख्स ने उससे पूछा कि आपका कोई बेटा कमाने के काबिल नहीं है, तो उस बूढ़ी औरत ने कहा मेरा बेटा है। आदमी बोला फिर आप यहाँ क्यों भीख मांग रही हैं, वो कुछ काम नहीं करता क्या? बूढ़ी औरत ने कहा मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है, मेरा बेटा नौकरी के लिए बैरूने मुल्क गया, जाते हुए अखराजात के लिए मुझे कुछ रकम दे गया था, वो खर्च हो गई है, इसी वजह से मैं भीख मांग रही हूँ। उस शख्स ने पूछा कि आपका बेटा आपको कुछ नहीं भेजता? औरत ने कहा मेरा बेटा हर माह रंग बिरंगी कागज भेजता है जिसे मैं घर की दीवार पर चिपका रखती हूँ। वो शख्स उसके घर गया, ये देखकर दीवार पर बैंक के 60 ड्राफ्ट चिस्पा कर दिए गए हैं। हर ड्राफ्ट 50,000 रुपए का था। तालीम याफ्ता ना होने की वजह से वो औरत नहीं जानती थी उसके पास कितनी दौलत है। उस शख्स ने उसे ड्राफ्ट की अहमियत समझा दी तो वो औरत बहुत खुश भी हुई और हैरान भी और परेशान भी कि दौलत के होते हुए भी वो भीख मांग रही है और भीख मांगती रही है। हमारी हालत भी इस बूढ़ी औरत की तरह है। हमारे पास कुरान पाक मौजूद है, हम इसे चूम कर माथे से लगा कर अपने घर में रखते हैं, लेकिन हम इसका फायदा सिर्फ इस सूरत में उठा सकेंगे जब हम इसे पढ़ेंगे, इसके मायने तफसीर को समझेंगे, इसको अपनी जिंदगी में ले आएंगे, तभी इंशाल्लाह हमारी दुनिया और इसके बाद की जिंदगी दोनों बेहतर होगी। बहुत बड़ा खजाना हमारे पास मौजूद है, लेकिन जहालत की वजह से इसमें छुपे इनामात से हम सब महरूम हैं। तो आपने कोशिश करनी है, अगर आपकी रूटीन लाइफ में आपको कुछ टाइम मिलता है तो आपने इस कीमती खजाने से जो है फैज उठाना है, मुस्तफीद होना है, और इसे जो चीज आप पिक कर रहे हैं उसे दूसरों में भी तकसीम करना है, क्योंकि जो आप देंगे वही लौट कर आएगा। यही है आज का पैगाम। आप सबके नाम अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, खुश आमदीद कहूंगी अपने तमाम सामेईन को। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन लम्हात को रहमत और बरकतों और खुशियों के साथ आपकी जिंदगी से भर दे और आपके दिल को सुकून, जिंदगी को आसानी, रिस्क में कुशादगी, सेहत में बरकत अता फरमाए। जो दुआएं हैं अल्लाह ताला इन्हें आज कबूलियत के मकाम तक ले जाए। आपका आज का दिन नूर, ईमान, खुशबू, मोहब्बत, इत्मीनान कल्ब से भरपूर रहे। आमीन सुम्मा आमीन।

जनाब आज का टॉपिक आज आप मुझे बताने वाले हैं, जिंदगी में अगर आपको इंतखाब करने का मौका मिले तो जिंदगी में किसका इंतखाब करना चाहिए, वो शख्स जो आपसे मोहब्बत करता है या वो शख्स जिससे आप मोहब्बत करते हैं। आपको हम ऑप्शन देते हैं, दो ऑप्शन, ठीक है। आपने एडवाइस देनी है आपकी सिलेक्शन कौन होगा, एक वो शख्स है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, एक वो शख्स है जो आपसे मोहब्बत करता है। इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है आपने।

मोहब्बत ऐसा जज्बा है कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। आज इस हवाले से गुफ्तगु होने वाली है, आपको मौका मिल रहा है। आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है, आपके पास दो ऑप्शन है। एक वो इंसान है जिससे आप बेहद मोहब्बत करते हैं, रियल वाली सच्ची मोहब्बत, और एक वो इंसान है जो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। अब आपकी चॉइस कौन है ये बताने के लिए आपने डायल करना है 03136615688 और मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में लिखना है एमपी के, एक स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर एसएमएस रवाना कर देना है 8881 पर।

0: और जनाब मैंने आपसे पूछा, आपके पास दो लोग हैं, ठीक है, आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक वो इंसान है जो आपसे बेहद मोहब्बत करता है, एक वो इंसान है जिससे आपको बेहद मोहब्बत है, आप इन दोनों में से किस एक को सिलेक्ट करेंगे? नेक्स्ट कॉल और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जरा माजत खाऊं, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, मैंने आपकी कॉल कट की है, शायद नेटवर्क इशू है। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जनाब, वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा
1: है? अभी पारो मुझे कहा याद है।
0: वेलकम आपको, और क्या कहेंगे अदर टॉपिक के बारे में?
1: अभी टॉपिक जो आज जो था प्यार कंदो, जो कंदो संगत कंदो, होने सा प्यार कंदा से, जो न कंदो तो न कंदा से।
0: चलें ठीक हो गया, दोस्तों को याद कर लें।
1: सिद्दीक मंगी, राशिद भुट्टो, दिलशाद भुट्टो,
0: वालेकुम अस्सलाम। ओके ओके, अच्छा हर कोई ये कह रहा है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है मेरी चॉइस होगा वो। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ओ माय गॉड, आपकी तो कॉल ही कट गई है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जनाब, वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है? अदा भली घर चाहूं था, तव्हां खे कहिड़ा हाल आहिनि?
2: शुक्र आहे भाजी, शुक्र आहे। तव्हां ॿुधायो, गुलनाज तव्हांजो मिजाज कीअं आहे? तव्हांजो सतो कीअं आहे?
0: अलहमदुलिल्लाह, अदा करम
2: जी जी भाजी, शो ॿुधायो था, नाश्ता छॾी रहिया?
0: ठीक आहे। अदा टॉपिक बाबति छा चवंदो तव्हां?
2: भाजी असल में चवंदा आहिनि त मोहबत ॾे मोहबत वठो। जे पाण माण्हू सही हूंदो, सचो हूंदो, त मोहबत ॿिए खां बि मिली सघंदी।
0: सही, आप ये बताए, दो लोगों में से आपकी चॉइस कौन है? दो लोग हैं आपके पास, दोनों में से एक को आपने सिलेक्ट करना है।
2: अच्छा
0: जी,
2: तो हमारे को चॉइस ये लगता है, मिसाल जो वध का इज्जत देता है।
0: चले ठीक है, दोस्तों को याद करेंगे।
2: हाँ बाजी, मेरा भाई है जहीर अहमद जतोई
0: जी,
2: मेरा भाजपा जतोई, बाकी जो भी सुन रहा है वफा अब्दुल वहीद जतोई पारा सजे सत के सलाम
0: सबनी पारा। वालेकुम अस्सलाम, अदा मेहरबानी, थैंक यू।
2: ओके
0: ओके जी, और जनाब आपको बताते चले, खुशाइन बात ये है कि आज एक्सपेक्टेड है, शायद आज रात में शायद एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी, ये मैं नहीं कह रही। ओके ये पैशन गोई है, तो बरसात का जो एक स्पेल है वो शायद हमारे सिटी, कम अज कम मीरपुर खास में बारिश रात लेट नाइट है मुतवक्के। तो जनाब बरसात के हवाले से भी हम आपको प्यारे प्यारे गीत सुनवाएंगे। फिलहाल तो यहाँ पर हमने लेना एक छोटा सा तशहीरी वक्फा, और इस ब्रेक के बाद मैं आपको दोबारा ज्वाइन करती हूँ। डोंट गो एनीवेयर।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ बुड़ी 381-5-5-786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: ट्रेंड के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अगर मसूड़े फूले हुए हों तो नमक में सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं। दिन में 2 से 3 बार इसे लगाने से मसूड़ों में तकलीफ नहीं होगी और ये जो भी आपका मसला है ये हल हो जाएगा। आलू के चिप्स फ्राई करते वक्त अगर कढ़ाई में थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी डाल दी समिन, कभी कभी ऐसा होता है बहुत जो समझदार इंसान होता है बहुत होशियार होता है, मिस्टेक उससे भी हो जाती है। शातिर चोर अपनी गलती से उस वक्त पकड़ा गया जब घर से चोरी किया गया सामान घर मालिक की दुकान पर फरोख्त करने पहुंच गया। चोरी का ये दिलचस्प और मुनफरिद वाकया भारत में पेश आया जिसमें चोर अपने तई होशियार करते पकड़ा गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत झारखंड के इलाके बालियापुर की मार्केट में ये वाकया पेश आया जहां एक हफ्ते कब घर से चोरी करने वाला चोर माल मसरूका समेत अपनी ही दिलचस्प गलती की वजह से पकड़ा गया। एक हफ्ता कबल बालियापुर के रिहायशी साधु पाल के घर में चोरी हुई थी जिसमें दूसरे सामान के अलावा 4 पंखे एक पानी की मोटर चोरी की गई थी। वारदात की रिपोर्ट मुतालका थाने में दर्ज कराने के बावजूद ना मुलजिम का सुराग मिला ना ही माल मसरूका वापस मिला और ये खुशकिस्मती के चोर वारदात के एक हफ्ते बाद ये सोच करके लोग इस वारदात को भूल गए होंगे चोरी का सामान बेचने उसी बाजार में जहाँ पहुँचा जहाँ जिस घर के यानी इफेक्टेड हाउस मुतासरा घर के मालिक की दुकान थी और उसको इस घर में चोरी के बाद सेकंड हैंड वाटर पंप की जरूरत थी। जब चोर मोटर बेचने के लिए वहां पहुंचा दुकान पर घर के मालिक के बजाय इसका भाई मौजूद था जिसने भाई की मौजूदगी में उसको आने का कहा। शाम को भाई के आने पर चोर को फोन करके बुलाया। चोर ने कपड़े में लिपटी मोटर को निकाला तो मधाव पाल ने अपनी चोरी शुदा मोटर को पहचान लिया, भाई को मैसेज कर दिया। जब बेचने वाले से पूछा कि अब मोटर कहां से ली तो वो घबरा गया, वहां से फरार होने की कोशिश की। ताहम दीगर दुकानदारों ने उसको पकड़ लिया, उससे पूछा गया और पुलिस के आने पे उनके हवाले कर दिया गया। बालियापुर थाने के इंचार्ज का कहना था कि इस वारदात की रिपोर्ट पहले ही दर्ज की जा चुकी थी। चोर ने अपने साथियों के नाम बता दिए जिन्हें तलाश और बाकी सामान बरामद करने की कोशिश की जा रही है। तो होता है ना ऐसा कभी कभार, कहते ना चोरों को पड़ गए मोर, वो कहावत आपने सुनी होगी। अपनी ही गलती से जो है ना, यानी अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार दी है इन्होंने।

0: हिसाब से। ओके, और जनाब वक्त हुआ चाहते कंटिन्यू करेंगे, एंजॉय दिस ट्रैक।
1: कर दिए तू हर वेले झूठा मेरा प्यार।
2: It's 4 PM. अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: अब आप सुनेंगे GAFM
1: फोन के राबतो सऊदी अरब के बहरी जागन ते हुसैन के हमलन की सख्त लफ्ज में मजम्मत सऊदी अरब से मुकम्मिल इजहार शहबाज शरीफ चो तो मां फील्ड मार्शल ए कौम सऊदी क्यादत अवाम सा गड बीठल है सऊदी बहरी टैंकर से हमला कें भी सूरत में कबूल जोगा नाहन हमला आलमी कानून की सीधी भंजकड़ी है अड़न कदम से इलाके की सलामती अमन के नुकसान थी सके तो पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती खुदमुख्तियारी है खुशहाली की हिमायत जारी रखो सऊदी वली अहद पारा पाकिस्तान के मुस्तकिल हिमायत ए वेझल लागापन पारा कई ईरान के मुआदो न करण की गरी कीमत अदा करनी पवंदी ईरान के होश में अचण ताई हमलन में वाह थी रही मनीला में मीडिया से गालाइंदे अमेरिकी परदेही वजीर मार्को रुबियो है तो ईरान वाजे तौर पर मुआदे के लिए तैयार न है ईरान हौसिन के भी तकरार में शामिल कर दिसूं था हाने छातो थिए उम्मीद है तो हूसी हमला रोके छो ईरान के भी बहरी जहाजन के हमलन की कीमत अदा करनी पवंदी निशान पानी में चीन के सरगर्मी से गंती है अमेरिका इदारतन की हिमायत जारी रखो पाकिस्तान खिते में अमन के क्याम लाय किरदार अदा कर रो है चिकतान कें भी मुफाद में ना धुरू अमन लाय सहब जो मुजाहरो कन मनीला में आसियान इजलास के खिताब कन्दे नायब वजीर आजम इसाकदार है पाकिस्तान अमेरिका ईरान विच में गालिन लाय सहूलतकारी कई पाकिस्तान इलाकाए अमन इस्तेकाम ए सहकार लाय पुरजम है भारत पारा सिंतास मुआदो मुआतिल करण गणती जोगो चिड़ दियारींद कदम है अफगान सरजमीन भी पाकिस्तान खिलाफ दहशतगर्दी लाय इस्तेमाल न थियण घुर्जे आपने अर्मुस्ता अमेरिका ईरान में शुरू थियल चिकटाण खत्म न थी बिन्हीं मुल्कन जा एक बे ते बारह डी के हमला अमेरिका जो ईरानी सूबे खुस्तान में मुसाफिर टर्मिनल ते हमलो ब शहरी शहीद सेरक बोशेर एवार ते भी हमला कया अमेरिकी फौज मौजूद अमेरिकी हमलन जो मकसद ईरान के आपने अर्मुज में बहरी जहाजन के हमलन की सलाहियत के घटायण हो ईरान जो भी अमेरिका ते जवाबी वार को उर्दन में अमेरिकी अड्डन ते हमला फाजर इनकलाब मौजूद उर्दन में अमेरिकी रेडार सिस्टम हेलीकॉप्टर हैंगर के तबाह किया गया है कोइत में भी अमेरिकी फौज के अड्डन से ड्रोन हमलन के नतीजे में वही तबाही थी है जमनी हुसैन के रेड सी में सऊदी अरब के बिन ऑयल टैंकर्स के निशानो बनाने की दावा सऊदी अरब एक जहाज के हमले की तस्दीक कर छी जमनी हुसैन जो चवण है बहरी नाकाबंदी की भंजकड़ी से सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स के निशानो बनाया वो सऊदी इख्तियार मूजिब एक जहाज से हमलो थो है अमलो महफूज है अफगानिस्तान में दहशतगर्दन की मौजूदगी खिते लाए खतरो है का भी जिम्मेदार रियासत शहर के निशानो बणजन से खामोश न थी वही सके पाकिस्तान एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के रद्द कर छो पर डेही तर्जुमान ताहिर हुसैन नंदरा भी है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में खतरन से जवाब दिनों है अफगानिस्तान में दहशतगर्दन के थाकन के निशानो बनाया है पाकिस्तान खिते में अमुन के कयाम वाले कोशिशन में मायूस ना थो अमुन जो रस्तो इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त नामे जरिए मिली सके तो सिंध काबीना अहम शोबन में पॉलिसी सुधारण लाए चैनी आला सतही टास्क फोर्स के कयाम की मंजूरी दई छी वे सैद वजीर सैद मुराद अली शाह सदारत हेठ काबीना जो इजलास सिंध सेक्रेटरीट वजीर आला सेक्रेटरीट सिंध असेंबली ए गवर्न हाउस के मुलाजिमन लाए सेहत इंश्योरेंस वाली सहूलत में वाद की मंजूरी भी डिनी वही
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM
4: 90.4 पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफएम मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03125252786।
5: जी हा, 2315525786।
4: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

कोशिश करेंगे नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में हम आपको कवाली जरूर सुनाएं। आज के लिए माजरत, बहुत शुक्रिया, आप शामिल प्रोग्राम हुए। आप सब लोग इंजॉय कीजिए अखलाक अहमद की आवाज में बहुत ही प्यारा पुराना और सदाबहार गीत।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: हाय हाय हाय।

0: एक अंडे को मुकम्मल उबलने में कितना टाइम लगता है? ये आपने मुझे बताना है, एक अंडे को मुकम्मल उबलने में कितना टाइम लगता है। 03133661568 लाइव कॉल नंबर है। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में एमपी के लिखना है, स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना कर देना है 8881 पर। चलिए जी, आपके आपकी कॉल्स की जानिब जाते हैं, देखते हैं लाइन पर कौन है हमारे साथ। ओ माय गॉड, चलिए जी, आपकी तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। अब आपके एसएमएस भी शामिल करने हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम अदी
0: जी। अदा, सवाल का जवाब बताइए।
1: अभी कुर्बान अली खान वगैरह गोटा जी नाम का गली लगे झंडो मरी का जवाब आए 15 सेकंड।
0: वाह, सदके जाऊं आपके जवाब के, गलत आंसर है। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, और एक अंडे को मुकम्मल उबलने में कितना टाइम लगता है? कुर्बान खास के लिए का कहना है 15 सेकंड। शायद चाइना में अंडा बॉयल करने के लिए भेजा है आपने, जब ही वो 15 सेकंड में बॉयल हो रहा है। ओके, और आपके मैसेजेस जो है, ओके, कौन से मैसेजेस आपके हैं जो मैंने शामिल प्रोग्राम करने हैं? अच्छा जी, ओके, मोहम्मद अजीज जरवार, याद आ गया आपने मुझे कल गाने का कहा था, मैंने कहा था आज प्ले करेंगे। उमायमा मीर प्रकाश से वेलकम इन अवर शो। उमायमा, थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम अदा, कौन बात कर रहा है?
2: अर्शद बात कर रहा है, कर रहे
0: आपको। सॉरी, कौन बात कर रहा है?
2: अर्शद बात कर रहा है, कर रहे।
0: अर्शद भाई, आपको वेलकम कहते हैं, क्या हाल है आपके? ठीक है
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत है?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या जवाब है हमारे सवाल का?
2: मैं तो यही कहूँगा तकरीबन जो है

मोहब्बत की तिजारत में खसारा कौन देखेगा, समंदर कौन देखेगा, किनारा कौन देखेगा, तुम्हें दिलकश बनाया है मेरी साहिर निगाहों ने, मेरे अंदाज से चेहरा तुम्हारा कौन देखेगा। ये कारजार इश्क है अपने पराए एक है, तीर किसने किसको मारा कौन देखेगा, तो बिछड़ेगा तेरे हमराह जाएंगी मेरी आंखें, तुम्हारे आने जाने का नजारा कौन देखेगा, जो आशिक है वो जाएगा अगर सोहनी पुकारेगी, बिपरते तेज दरियाओं का धारा कौन देखेगा, जरा सा फासला होता है मिलने में बिछड़ने में, तेरी खातिर ट्रैफिक का इशारा कौन देखेगा, मोहब्बत की तिजारत में खसारा कौन देखेगा, समंदर कौन देखेगा, किनारा कौन देखेगा।

यही कहूंगी, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखती हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे यादों के मायने से वो चेहरे याद रखती हूँ, जरा सा हट के चलती हूँ जमाने की रिवायत से कि जिन पे बोझ मैं डालूं वो कांधे याद रखती हूँ, नहीं तो भूल जाती हूँ खराशे तल्ख बातों की मगर जो जख्म गहरे दे रवैये याद रखती हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखती हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखती हूँ। सामिन, कुछ ताल्लुक और दोस्तियाँ सिर्फ खास नहीं होते बल्कि खासुल खास होते हैं, जिनसे आप लड़े इख्तलाफ करें सब कुछ होने के बावजूद आपको इन पे हमेशा मान होता है, यकीन होता है कि आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर किसी मुश्किल में हो तो वो बगैर चूं चरा किए आपके साथ होंगे। अगर आपके लाइफ में ऐसे लोग मौजूद हैं तो इन्हें संभाल के रखिएगा, बहुत नसीब से ऐसे लोग मिलते हैं।

ईरान खे वाइदो न करण जी घणी क़ीमत अदा करणी पवंदी। ईरान जे होश में अचण ताईं हमलनि में वाधि थींदी रहंदी। मनीला में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त ईरान वाज़े तौर ते वाइदे लाइ तयार न आहे। ईरानियन होसियुनि खे बि तकरार में शामिल करे छडि॒यो आहे। ॾिसूं था हाणे छा थो थिए। उमीद आहे त होसी हमला रोके छॾींदा। ईरान खे बि पहिरीं जहाज़नि ते हमलनि जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। एशियन पाणे में चीन जी सरगर्मियुनि ते गणती आहे। अमरीका इतिहादनि जी हिमायत जारी रखंदो।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252578 6।
5: जी हा, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अचण ताई हमलन में वाद थींदी रहंदी। मनीला में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त ईरान वाज़े तौर मुआहिदे लाइ तयार न आहे। ईरानियन हुसिन खे बि तकरार में शामिल करे छडि॒यो आहे। डि॒सूं था हाणे छा थो थिए। उमीद आहे त हुसी हमला रोके छॾींदा। ईरान खे बि बहरी जहाज़नि ते हमलनि जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। एशियाई पाणियुनि में चीन जी सरगर्मियुनि ते गणती आहे। अमरीका इतिहादियुनि जी हिमायत जारी रखंदो। पाकिस्तान खिते में अमन जे क़याम लाइ किरदार अदा करे रहियो आहे। छिकताण कंहिं जे बि मफ़ाद में नाहे। धुरियूं अमन लाइ सहब जो मुज़ाहिरो कनि। मनीला में आसियान इजलास खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि लाइ सहूलतकारी कई। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम ऐं सहकार लाइ पुरज़म आहे। भारत पारां सिंध तास मुआहिदो मुअतल करणी जोॻो ऐं चिड़ ॾियारींदड़ क़दम आहे। अफ़गान सरज़मीन बि पाकिस्तान ख़िलाफ़ दहशतगर्दी लाइ इस्तेमाल न थियणु घुर्जे। आपना हुर्मुस्ता अमरीका ऐं ईरान में शुरू थियल छिकताण ख़तम न थी। ॿिन्ही मुल्कनि जा हिक ॿिए ते 12 ॾींहं बि हमला। अमरीका जो ईरानी सूबे खुज़िस्तान में मुसाफ़िर टर्मिनल ते हमिलो। बशहरी शहीद सेरिक बोशहर ऐं अहवार ते बि हमला कया। अमरीकी फ़ौज मूजिब अमरीकी हमलनि जो मक़सदु ईरान जे अपना हुर्मुस में बहरी जहाज़नि खे हमलनि जी सलाहियत खे घटाइण हो। ईरान जो बि अमरीका ते जवाबी वार। पोए ताईं उर्दन में अमरीकी अॾनि ते हमला। पासन इनकलाब मूजिब उर्दन में अमरीकी रेडार सिस्टम हेलीकॉप्टर हैंगर्स खे तबाह कयो वियो आहे। कुवैत में बि अमरीकी फ़ौज जे अॾे ते ड्रोन हमलनि जे नतीजे में वॾी तबाही थी आहे।

कलमा पढ़ो से निक भेरा देहर पढ़न बियाए बल बल पढ़न दिए यार सजर दी हूं दिसा कु जुदाई मुस्लिम विचों का

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मोआसी से कांधी न थिया पर इने किसे जी की के शायद खबर न हुंदी त यो किए थियो ऐ छो सडियो त जनी लाए मोआसी से कांधी न थिया आश्क वेचारो जड़ा बीमार थियो यो किसो ताके आ सही करे तो बुधाया आश्क वेचारो जड़ा बीमार थियो पंजे माइटन आई दोस्तन के चई तो मुखे पंजे महबूब जे मुल्क ते खणी हलो आ उते मरंदुस जो मुझो महबूब मुझो कुल्हे कांधी थी

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हाँ 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GAFM 90.4।

सिंध काबीना पारां वफ़ाक़ खां 5 लख मैट्रिक टन कणक ख़रीद करण जो फ़ैसिलो। सरकारी बासमती तफ़रीही ऐं सफ़री अलाउंस में वाध जी बि मंज़ूरी। मईशत, मौसमियात, मसनूई ज़हानत ऐं आबी वसीलनि बाबति 4 टास्क फोर्स बि जोड़ियूं वयूं। वॾे वज़ीर वाद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जे इजलास दौरान इंटर बोर्ड में सुधारनि जी मंज़ूरी। तालीमी बोर्ड जे चेयरमैन जी हद 55 साल मां वधाए 63 साल कई वई। सिंध सेक्रेटरियट, वज़ीर आला सेक्रेटरियट, सिंध असेंबली ऐं गवर्नर हाउस जे मुलाज़मनि लाइ सिहत इंश्योरेंस वारी सहूलियत में वाध जी मंज़ूरी बि ॾिनी वई। वॾे वज़ीर पारां सूबे में गुटखो ऐं माओ विकिरो कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जी बि हिदायत। वफ़ाक़ी हुकूमत जा इतिहादी आहियूं, नई मरकज़ी हुकूमत में शामिल आहियूं। पीपल्स पार्टी जे सिंध हुकूमत हक़ीक़ी आहे। अवाम खे ख़बर आहे त कीअं क़वाम 47 ते इक़्तदार में आयो आहे। सदर समाव वारे वज़ीर शजील नामेमण चयो आहे त असां रुगो जमहूरियत लाइ वफ़ाक़ खे सपोर्ट कयो आहे। पंजाब में ज़िले सतह ते मोटर वेज ठही रहिया आहिनि। सिंध में जाइज़ मोटर वे बि न पियो ठाहियो वञे। आज़ाद कश्मीर में पीपीएफ सूरत सां कामयाबी माणी वई। समूरो पंजाब बरसाति में बुडल आहे, पर क़ौमी मीडिया कुझु न पई ॾेखारे।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
4: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हां 2131525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज।
5: ओ अज जल्द

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध खां बिना पारां फाक खां 5 लख मैट्रिक टन कणक ख़रीद करण जो फ़ैसिलो। सरकारी मुलाज़मनि जी तफ़रीही ऐं सफ़री अलाउंस में वाध जी मंज़ूरी। मईशत मौसमियात मसनूई ज़हानत ऐं आबी वसीलनि बाबति 4 टास्क फोर्स बि जोड़ियूं वयूं। वॾे वज़ीर वाद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जे इजलास दौरान अहम फ़ैसिला। तालीमी बोर्ड जे चेयरमैन जी उमिरि जी हद 55 साल मां वधाए 63 साल कई वई। सिंध सेक्रेटेरिएट वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट सिंध असेंबली ऐं गवर्नर हाउस जे मुलाज़मनि लाइ सिहत इंश्योरेंस वारी सहूलियत में वाध जी मंज़ूरी बि ॾिनी वई। वॾे वज़ीर पारां सूबे में गुटको ऐं मावो विकिरो कंदड़ ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जी बि हिदायत। पाकी हुकूमत जा इतिहादी नाहियूं, नई मर्कज़ी हुकूमत में शामिल आहियूं। पीपल्स पार्टी जी सिंध हुकूमत हक़ीक़ी आहे। अवाम खे ख़बर आहे त केर फॉर्म 47 ते इक़्तदार में आयो आहे। सूद समा वारे वज़ीर शर्जील इनाम अहमद चयो आहे त असां रुगो जमहूरियत लाइ वफ़ाक खे सपोर्ट कयो आहे। पंजाब में ज़िले सतह ते मोटर वेज ठही रहिया आहिनि। सिंध में जाइज़ मोटर वे बि न पियो ठाहियो वञे। आज़ाद कश्मीर में बि पी अक्सरियत सां कामयाबी माणींदी। समूरो पंजाब बरसात में वुडल आहे पर क़ौमी मीडिया कुझु न पई ॾेखारे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में ॾे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का
2: नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GAFM 90.4।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
7: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
7: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331252578
7: जी हाँ 2315525786
6: GAFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।